मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हमारी श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों के बाद सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। करते हैं थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और

सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अर्चना कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्नेहिल शुभकामनाओं के साथ स्वागत, प्रातवंदन, अभिनंदन। श्रोताओं, गर्मी जो है वो अपने पूरे तेवर दिखा रही है और धूप जैसे अंगारे बरसा रही हो, हवा भी मानो तपिश का ही संदेश दे रही हो, लेकिन मन में यदि भक्ति की शीतल छाया हो तो सबसे कठिन मौसम भी सहज लगने लगता है। प्रभु का स्मरण ऐसा मधुर चोका है जो तन को नहीं तो मन को अवश्य ही ठंडक पहुंचा देता है। आइए श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार है, तो क्यों ना शान के स्वर में गाई इस हनुमान प्रार्थना से हम भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना की शुरुआत करें।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ऐसा कार्यक्रम जहां हर भजन में विश्वास की सुगंध है, हर सुर में श्रद्धा का प्रकाश है और हर शब्द में आत्मा को सुकून देने वाली अनुभूति है। आइए श्रोताओ, आप सुनते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वरों में ये

ईश्वर का स्मरण जीवन की वो ठंडी छाव है जो परिस्थितियां चाहे जैसी हों हमें संतुलन, धैर्य और विश्वास का अनुभव कराती हैं। भक्ति वो मधुर सरिता है जिसमें डुबकी लगाते ही मन निर्मल हो उठता है, विचार सकारात्मक हो जाते हैं और आत्मा को एक नया उत्साह मिलता है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये भजन।

हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। जब सुरों में श्रद्धा घुलती है, शब्दों में समर्पण झलकता है, तब भजन केवल संगीत नहीं रहता बल्कि प्रभु तक पहुंचने का एक सुंदर माध्यम बन जाता है। आइए श्रोताओ, अनूप जलोटा और प्रीति सेठ के स्वरों में सुनते हैं ये भक्ति रचना।

आज कुछ पल संसार की भागदौड़ से दूर होकर अपने अंतर मन की ओर चला जाए, प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए, उनके गुणों का गान किया जाए और उस दिव्य अनुभूति को महसूस करके जो मन को शांति, हृदय को शक्ति और जीवन को नई दिशा देती है, उस ईश्वर को याद किया जाए। आइए श्रोताओ, भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के समापन पर सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की गाई ये आरती।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से

सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

0: श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी में प्रमुख स्वर थे अनुराधा पौड़वाल और श्रीकांत पारगांवकर के, और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति का संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब हमारे श्रोता सुनेंगे आज का चिंतन कार्यक्रम।
1: संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। इसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और इसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणित हो सकता है। विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। वाणी तो सभी को मिली हुई है और बोलते भी सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झड़ता है, दूसरी बात से झगड़ा हो जाता है। इसलिए सदा सदा से ये कहा जाता रहा है कि किसी का हृदय अपनी कटु वाणी से नहीं दुखाना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण मार्ग होए संचराए, वेद है सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जुबान क्यों खराब कर रही हो, लो तुम्हें एक शेर सुनाता हूं। कुदरत

0: को नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध समाप्त हो गया। ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है। कुछ बातें कहनी ही पड़ती हैं, किंतु ऐसे अवसर पर होना ये चाहिए कि बात भी कह दी जाए और बुरा भी ना लगे, और उसमें वो कड़वाहट न आने पाए जो दूसरों के हृदय को विदीर्ण कर देती है। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुर्य से कटु सत्य को भी प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें एक था लुकमान। लुकमान अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रशंसनीय था। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। जाओ एक बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया, एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। मालिक के कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है मालिक। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे लेकर आओ। लुकमान बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर में उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है, यानी अगर जीभ बुरी है तो सब बुरा है। ये तो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती हैं, और वो ये कि जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है, विशेष करके मधुर वाणी का।
1: अभी हमारे श्रोता यतीन्द्र चतुर्वेदी की जुबानी जान रहे थे वाणी का प्रयोग। इस विषय पर थे कुछ विचार। कार्यक्रम था चिंतन। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।

इस समय प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। चित्रपट संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 9:00 से 10:00 तक श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:30 का समय रहेगा लोक संगीत कार्यक्रम का। 7:00 का समय हर रोज की तरह रहेगा चौपाल कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पीएम मत्स्य संपदा योजना, और इसके अलावा इसी कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज भारती से की गई भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय रहेगा पशु में टीकाकरण। पीएम धन योजना पर भी आप जान सकेंगे कुछ जरूरी बातें। फिल्म संगीत का लुत्फ आप एक बार फिर उठा सकेंगे शाम 6:05 पर। युवानी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता आनंद ले सकेंगे शाम 5:00 से 6:00 तक, और आज का संवाद होगा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो जो हमें स्वयं के लिए पसंद ना आए। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 12:00 आप सुनेंगे, कार्यक्रम रहेगा उमंग घर आंगन। ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे प्रातः 9:30 से 10:00 तक। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहने वाला है गर्मियों में त्वचा की देखभाल और विश्व निष्पक्ष

पक्ष खेल दिवस। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे सीमा गौतम की वार्ता, जीवन प्रदायक जल और हमारी जिम्मेदारी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे प्रातः 9:10 पर। और श्रोताओं को अब बताएं कि आप सुनेंगे बहुत ही खास कार्यक्रम प्रातः 8:15 से 9:00 तक उत्तम स्वास्थ्य सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय रहेगा ब्रेन स्ट्रोक, लकवा रोग, कारण बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर संजय जायसवाल। तो आप इस कार्यक्रम में टेलीफोन कर सकते हैं 2941142 पर, और इस विषय से संबंधित यदि आपके मन में दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप डॉक्टर संजय जायसवाल से सीधी बात करके उस सवाल का जवाब जान सकते हैं। और श्रोताओं को बताएं प्रातः 7:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत गाने सुहाने नमस्कार कोटा कार्यक्रम का समय रहेगा हर रोज की तरह प्रातः 7:00 का। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा आपका उद्योग देश का आर्थिक संबल, और साथ ही प्रेरणा के स्रोत आर्थिक स्वदेशी और जमशेदजी टाटा पर भी आप छोटी छोटी सी बातें जान सकेंगे। तो श्रोताओं ये थे हमारी आज की इस सभा के खास खास कार्यक्रम, उनका संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

श्रोताओ बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। भले ही आप इसे अपने रेडियो सेट पर सुने, मोबाइल पर सुने, अपने न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुने। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे संस्कृत में समाचार। करते हैं थोड़ा सा इंतजार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, 7 बजे मिलेंगे नमस्कार कोटा के साथ।

मीजी वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही FM 102 103.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। और हमारे तमाम श्रोताओं को हो रहा है अपने मनपसंद कार्यक्रम का इंतजार, जिसका नाम है नमस्कार कोटा।

0: लेकिन लेकिन लेकिन बात फिलहाल मोहिनी की नहीं, गर्मी रानी की हो रही है। जी हाँ, गर्मी ने ऐसी चाल चली है कि सूरज महाकाल सुबह से ही फुल फॉर्म में है और उमस रानी ने भी पसीने से दोस्ती कर ली है। हाल ये है कि पंखा कह रहा है कि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, कूलर बोल रहा है कि भाई मुझसे जितना हो सकता है कर तो रहा हूँ, और हम सब कह रहे हैं बस एक ठंडी हवा का झोंका मिल जाए। उमस का आलम कुछ यूं है कि बैठी बैठी भी लगता है जैसे कि मैराथन दौड़ से दौड़ कर आ गए हो, और गर्मी का तेवर ऐसा है कि आइसक्रीम भी सोच रही है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं। तो इस तपते मौसम में मुस्कुराहट की ठंडी सी फुहार लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम के साथ, जहां बातों में होगी मिठास, गीतों में होगी ठंडक और मनोरंजन का ऐसा एहसास कि मौसम की गर्मी भी लगेगी हल्की फुल्की सी।
1: अरे पहले ये करिए, कहां थी आप?
2: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।

0: மின்னுத்தே பார்பார்
1: और श्रोताओ हो चुका है प्रोग्राम नमस्कार कोटा का आगाज और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर तरन्नुम। नाज कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम सा।

और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं नमस्कार कोटा कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और आप इस कार्यक्रम में रहेंगे हमारे साथ अब से लेकर 7:30 बजे। तो आपको करना है क्या पता है ना, रखनी है अपने रेडियो सेट की लाजमी सी आवाज इतनी कि ना हो किसी को एतराज। और हाँ, एक बार ये भी कहना बनता है कि सुनते रहिए मन लगाकर कान लगाकर। और श्रोताओं, अब कर ली जाए आज के विचार की बात। तो आज का विचार जो है वो ये कहता है कि कई बार जब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं, अपने कामों को शुरू करने लगते हैं, तो कभी कभी हमें ये डर सताता है कि कोई हमें ये ना कह दे कि ये बड़ा चालाक है या ये बड़ी चालाक है। लेकिन आपको ये याद रखना है और ये बात समझनी है कि जो स्वाभाविक चतुराई होती है ना, उसका इस्तेमाल जरूर करना है। जीवन की दौड़ में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी सफलता का आधार बनती है, और यही क्षमता कहलाती है स्वाभाविक चतुराई। स्वाभाविक चतुराई का अर्थ चालाकी नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझकर शांत मन से बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेना है। ये वो कला है जो हमें कठिन समय में भी सही रास्ता चुनना सिखाती है। स्वाभाविक चतुराई अपनाने के कुछ सरल से तरीके हैं। पहले समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुककर सोच लिया जाए, अक्सर शांत मन सबसे अच्छा समाधान खोज लेता है। शब्दों का सोच समझ कर प्रयोग किया जाए। कभी कभी सही शब्द बड़े विवाद को टाल सकते हैं। मधुर और स्पष्ट संवाद चतुराई की पहचान होता है। समय की नब्ज को पहचानना सीखिए। कब बोलना है, कब सुनना है, कब मौन रहना है, ये समझदारी ही व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है। अनुभव से सीखा जाए। हर सफलता और हर चुनौती हमें सिखाती है। व्यक्ति सीखता रहता है और जो व्यक्ति सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। ईमानदारी के साथ बुद्धिमानी की जाए। सच्ची चतुराई वही है जो नैतिक मूल्यों के साथ हो। बुद्धि और ईमानदारी मिलकर स्थायी सफलता अवश्य देती है।

और साथियों अब बात कर ली जाए आज के विषय पर, आपका उद्योग देश का आर्थिक संबल। और ये भी पता है कि ये जो विषय है ना, ये न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, रोजगार और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। उद्योग केवल मशीनों और कारखानों का नाम नहीं है बल्कि ये नवाचार, परिश्रम और प्रगति की वो शक्ति है जो राष्ट्र को विकास की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। छोटे छोटे उद्यम हो और बड़े औद्योगिक संस्थान हो, हर उद्योग देश की आर्थिक मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आपको ये भी बताया जाए कि जब हम कोई नया उद्योग शुरू करते हैं तो या वो नया उद्योग स्थापित होता है तो वो केवल उत्पाद नहीं बनाता बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करता है और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देता है, तकनीकी विकास को गति देता है, देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। यही कारण है उद्योगों को राष्ट्र की आर्थिक धड़कन कहा जाता है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने उद्यमिता को नई ऊर्जा दी है, भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस जो ये कार्यक्रम है, इसकी जो ये चर्चा है, उससे हम ये जानेंगे कि उद्योग किस प्रकार देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बनते हैं।

उद्यमों की जो भूमिका है वो कैसे हर छोटा प्रयास राष्ट्र निर्माण में बड़ी भागीदारी निभा देता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी बात पर कहीं कहीं छोटी छोटी सी चर्चा है, जैसे कि जब आप किसी के साथ बैठते हैं या आप अपने दोस्तों की गोष्ठियों में बैठते हैं या कहीं भी आप घर में भी कभी वक्त निकाल कर छोटी छोटी सी चर्चा करते हैं तो ये चर्चा भी शामिल हो कि आपका उद्योग देश का आर्थिक संपत्ति।

और श्रोताओं को बताया जाए कि सूर्यास्त का समय आज शाम रहेगा 7:06 पर और सूर्योदय कल प्रातः होगा 5:40 पर।

इसी के साथ कोटा शहर का तापमान आपको बताया जाए, अधिकतम रहा 45.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 33.6 डिग्री सेल्सियस। नगर निगम में जन सुनवाई आज होगी। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से नगर निगम ने मंगलवार को यानी कि आज जन सुनवाई का आदेश निकाला है और प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को नगर निगम की ओर से जन सुनवाई की जाती है। इसके तहत मंगलवार को नगर निगम के ब्लॉक सी के प्रथम तल स्थित हॉल में जन सुनवाई होगी और सुबह 11 बजे से आयोजित जन सुनवाई में निगम के सभी अनुभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

और श्रोताओं, अब एक बहुत ही खास खबर जो आपके लिए सुविधाजनक साबित हो सकती है। दरा घाटी में आज रेल और सड़क मार्ग रहेगा बंद। दरा घाटी में नए रेल अंडरब्रिज के निर्माण के लिए अपलाइन पर आरएच गर्डर लॉन्चिंग के लिए मंगलवार को अतिरिक्त इंजीनियरिंग ब्लॉक किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण उत्खंड से गुजरने वाली कई यात्री गाड़ियां भी विलंब से चलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप जाने वाले हैं या कोई और जाने वाला है तो उनके लिए ये बहुत ही खास खबर है। कोटा शहर से दरा, झालावाड़, रामगंज मंडी और चेचट की ओर जाने वाले वाहन अनंतपुरा फोरलेन पुलिया से बारा, बपावर, खानपुर होते हुए झालावाड़ की तरफ भेजे जाएंगे। वहीं दिल्ली सवाई माधोपुर और एक्सप्रेसवे की ओर से आने वाले वाहनों को करणिया इंटरचेंज से बारा, खानपुर, झालावाड़ की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। और साथ ही आपको एक बहुत ही विशेष जानकारी दें कि किसी बीमार व्यक्ति, एम्बुलेंस या जरूरतमंद अगर मार्ग में फंस जाता है तो वहां पर ऐसी स्थिति आने पर लोग जो हैं वो कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर 876 यानी 876-485-0778। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं 876-485-0778 और 9530-443-888 9530-443-888 या फिर 0744-2350-888 0744-2350-888। तो इन नंबर का उपयोग करके मदद मांग सकते हैं।

बल्कि भारत के आर्थिक स्वावलंबन का एक मजबूत सपना भी देखा और वो व्यक्तित्व कौन हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं जमशेद जी टाटा की, जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब देश के आर्थिक शक्ति पर विदेशी नियंत्रण भी था। ऐसे समय में जमशेद जी टाटा ने स्वदेशी सोच को अपनाते हुए ये विश्वास जगाया कि भारत अपने संसाधनों, अपनी प्रतिभा और श्रम के बल पर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकता है। उन्होंने tata.com की स्थापना की और ऐसे उद्योगों की नींव रखी जो न केवल व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए भी समर्पित थे। उनका सपना था भारत में इस्पात बने, बिजली पैदा हो, विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान विकसित हो और वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिले। उनकी दूरदर्शिता का परिणाम स्टील का उद्योग, जिसने भारत को औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नई शक्ति दी। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्थानों के लिए उनका योगदान ये दर्शाता है कि वो शिक्षा और विज्ञान को राष्ट्रीय प्रगति का आधार मानते हैं। तभी तो हम उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो क्षेत्र है उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जमशेद जी टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा उद्योग वही है जो केवल लाभ नहीं कमाता बल्कि समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है। आर्थिक स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश की क्षमता पर विश्वास करना और स्थानीय संसाधनों को महत्व देना, आत्मनिर्भर भारत में निर्माण का योगदान देना। तो आइए जमशेद जी टाटा के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लें, संकल्प करें कि हम भी अपने कार्यों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत जरूर बनाएंगे। और अब हमारे श्रोता सोच रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, एक मीठा सा गीत आपके पास, यानी या तो आप अगर रेडियो सेट पर सुन रहे हैं तो रेडियो सेट पर आना चाहिए और अगर आप अपने मोबाइल पर सुन रहे हैं तो वहां आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप सुन रहे हो अपने छोटे से फोन पर तो वहां पर भी आएगा, बिल्कुल आएगा।

इसी के साथ हमारे श्रोताओं को दें हम एक और खबर। कोटा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू, 15 जून तक भर सकेंगे आवेदन। कोटा यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन 18 मई से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 15 जून निर्धारित कर दी गई है। और श्रोताओं, अब बात कर ली जाए एक और खास विषय पर। जिंदगी एक खेल की तरह है, कभी जीत मिलती है तो कभी हार का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन असली मायने इस बात के नहीं है कि हम कितनी बार जीते, बल्कि इस बात के हैं कि हमने खेला कैसे है। क्या हमने नियमों का सम्मान किया, क्या हमने अपने प्रतिद्वंदी को आदर दिया, क्या हमने ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। इन्हीं सुंदर मूल्यों को समर्पित है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, जो हर वर्ष 19 मई को मनाया जाता है। और आज भी 19 मई है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि खेल भावना, अनुशासन, सम्मान और सत्यनिष्ठा को अपनाना है। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके हाथ में केवल बल्ला, रैकेट या गेंद नहीं होती बल्कि उसके साथ होता है विश्वास, मेहनत और ईमानदारी के संस्कार। हार हो या जीत, यदि खेल निष्पक्षता से खेला जाए तो हर खिलाड़ी सम्मान का हकदार बन जाता है। खेल हमें सिखाते हैं नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना, पूरे मन से ये प्रयास करना कि इसी तरह से खेलना और जिंदगी में उतरना सच्ची सफलता है। यही मूल्य हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर हम ये संकल्प लें कि चाहे खेल का मैदान हो या जीवन का सफर, हम हमेशा ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीत का आनंद कुछ पलों का होता है लेकिन निष्पक्षता से अर्जित सम्मान जीवन भर हमारा साथ देता है।

श्रोताओं, हम आपको दिए देते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रातः 8:15 आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम उत्तम स्वास्थ्य। आज के कार्यक्रम का विषय रहने वाला है ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा रोग, कारण, बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे कोटा शहर के जाने माने डॉक्टर संजय जायसवाल। तो आप इस कार्यक्रम में हमें टेलीफोन कर सकेंगे और डॉक्टर साहब से सीधी बात कर सकेंगे यदि आपको विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए। तो सुनना ना भूलें आप हमारा ये कार्यक्रम। और अब जाने का यानी कि आपसे इस कार्यक्रम में इजाजत लेने का वक्त हो चला है, तो आपसे ये जरूर कहना बनता है कि प्लीज प्लीज प्लीज अपना ख्याल जरूर रखिएगा और साथ में बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखिएगा। और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, बॉडी को हाइड्रेट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, नींबू की शिकंजी का इस्तेमाल किया जाए और प्याज का इस्तेमाल किया जाए, पुदीने का सेवन किया जाए। और ये भी याद रखा जाए कि आपको गर्मी से अपना बचाव ज़रूर करना है, यानी कि आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने नहीं आएगा, कहने नहीं आएगा, आपको खुद अपना ख्याल रखना है और जो नहीं रख सकते हैं उनका भी आपको ही रखना है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना नहीं भूलना है ना। जी हाँ, और हाँ एक और बात याद है ना, दुआओं में ज़रूर याद रखना है मुझे भी और अपनों को भी। तो चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, रखना दुआओं में याद। अब इजाज़त दीजिए आपकी रेडियो साथी तरन्नुम नाज़ को। नमस्कार कोटा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नमस्कार कोटा कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन था तेजराम मीना का और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत गाने सुहाने। कीजिए स्वीकार एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत से भरा आदाब। कहते हैं कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कुछ धुनें होठों पर मुस्कान

फिल्म संगीत के इस सफर में आपने ये सबसे पहला गीत सुना अनुराधा पौडवाल शब्बीर कुमार की आवाजों में तेरी मेहरबानियां फिल्म से, और इस गीत के लिए जो बोल लिखे थे वो लिखे SH बिहारी ने, और संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओ, ये जो गीतों का छोटा सा सफर है, हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के मधुर और सदाबहार गीत। तो आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में वो गीत जो बॉलीवुड के वो गीत थे जो सुपरहिट हैं, सुपरहिट थे और सुपरहिट रहेंगे। आइए सुनते हैं अंदाज फिल्म का ये गीत जिसे आवाजें दी हैं सोनू निगम, अलका याग्निक ने, नगमा निगार समीर और मौसिकार नदीम श्रवण

आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप ऐसे गीत सुनते हैं जो गीत कोई ऐसा होता है जो आपको बचपन की गलियों में ले जाता है, तो कभी कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, तो कभी आपको अपनी बहुत ही शानदार वाली उम्र की याद दिलाता है, तो कभी किसी खास पल को फिर से जीवित कर देता है। जी हाँ, फिल्मी गीतों में यही तो ताकत होती है जो शब्दों से अधिक भावनाओं में बात करते हैं। आइए सुने जीत फिल्म का गीत, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम शवन।

फिल्म संगीत गाने सुहाने हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर से लौटते हैं आपके पास।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओ सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आप प्रातः 8:15 से 9 बजे तक सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा रोग, कारण, बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जायसवाल। तो आप इस कार्यक्रम में टेलीफोन कर सकेंगे और डॉक्टर साहब से सीधी बात कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर डायल करके 2941142@0744। तो सुनना ना भूले हमारा ये कार्यक्रम।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ

0: से भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दिल है तुम्हारा, जी हाँ ये है फिल्म का नाम, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजें। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण।

दिल है तुम्हारा फिल्म से सुना आपने ये गीत। और श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि आप प्रातः 8:15 से 9 बजे तक सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम जो हर मंगलवार को हम लेकर आते हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय रहेगा ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा रोग, कारण, बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जायसवाल। तो आप इस कार्यक्रम में टेलीफोन कर सकते हैं 2941142, एसटीडी कोड लगाकर 0744। तो विषय से संबंधित कोई भी सवाल, कोई आपकी जिज्ञासा है, आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात है जो आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीफोन जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। और श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम भी हो गया है समाप्त। कुछ ही पलों के बाद आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के आज के अंक के लिए। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1

0: मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
0: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र

0: बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ

0: हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगा कर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर

0: नई व्यवस्था, स्टेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स और साथ ही FM 102 103.6 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। हम तमाम सुनने वालों का इस सभा में और इस समय एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही हम श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
4: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
4: लकवे के लक्षण, शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
2: लाइव फोन इन प्रोग्राम उत्तम स्वास्थ्य में आप तमाम सुनने वालों का स्वागत, कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम अपने श्रोताओं से एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में जब भी हमें टेलीफोन करेंगे तो अपने रेडियो सेट की आवाज को थोड़ा धीमा करेंगे। आप ऐसे ही सवाल करेंगे जो विषय से संबंधित हों ताकि आपको भी मौका मिले और दूसरे और भी श्रोताओं को मौका मिले। साथ ही आपको बता दिया जाए कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा रोग, कारण, बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें। और इसी के साथ अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक डॉक्टर साहब की आवाज क्यों नहीं आई, तो आपकी इस बेसब्री को भी हम खत्म किए देते हैं और डॉक्टर साहब की आवाज आपको सुनवा देते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कोटा शहर के जाने माने डॉक्टर, चिर परिचित डॉक्टर संजय जायसवाल।
5: धन्यवाद
2: जी। डॉक्टर संजय जायसवाल, आपका हमारे इस कार्यक्रम में उत्तम स्वास्थ्य में बहुत बहुत स्वागत, श्रोताओं की तरफ से भी स्वागत और उनकी तरफ से हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं?
5: बिल्कुल फिट।
2: और बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप, बड़े मुस्कुराते हुए, एक मुस्कुराहट, बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आपकी आहट हुई और जब आप सामने आकर बैठे तो बहुत लग रहा था कि वाकई में आप बहुत अच्छे हैं और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे ऐसे ही कार्यक्रमों में आप आते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
5: थैंक यू
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, नाम से ही एक डर सा लगता है, लेकिन डर तो लगता है मगर सावधानी नहीं बरती जाती, अपना ख्याल नहीं रखा जाता और जैसा कि आपसे भी छोटी सी चर्चा में पता लगा कि लोगों को देरी हो जाती है समझ

0: व्यक्ति की आवाज में बिगड़ा होना। तो जब भी अचानक किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण हो तो माने कि उसको स्ट्रोक हो गया है। टी फॉर टाइम, मतलब टाइम तुरंत रोगी को ऐसे अस्पताल में ले जाना जहां इस प्रकार के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इन लक्षणों का सभी लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखा गया है कि स्ट्रोक के रोगी होते हैं उनमें लगभग 70% को पता ही नहीं होता कि ये लक्षण हमारे को स्ट्रोक के हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जब ये बीमारी जहाँ संभावना ज्यादा होती है तो रिस्क फैक्टर हम किसको मानते हैं कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है?
0: देखिए रिस्क फैक्टर कुछ तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं।
1: कॉल आया डॉक्टर साहब। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी कौन बात कर रहे हैं?
2: द्वारिका लाल जी बात कर रहे हैं, राम खलुंदा से।
1: कौन से गांव से?
2: खलुंदा
1: से। अच्छा जी जी द्वारिका लाल जी, आप डॉक्टर साहब से विषय से संबंधित सवाल कर रहे हैं ना?
2: आजी, आजी, आजी।
1: जी कहिए।
2: ये कहना है कि हाथ धूजने का कारण क्या है?
1: हाथ धूजने का कारण क्या है?
0: देखिए वैसे तो आपका ये प्रश्न है आज के प्रोग्राम से संबंधित नहीं है, फिर भी हाथ धूजना भी
1: डाउट हुआ होगा।
0: न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे हम लोग कंपन ट्रेमर्स बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, कुछ गंभीर बीमारियों में भी कंपन हो सकते हैं जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, या कुछ सामान्य बीमारी होती हैं इडियोपैथिक ट्रेमर्स बोलते हैं, फैमिलियल ट्रेमर्स। तो आपको यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं तो निकटवर्ती चिकित्सालय में दिखा करके अपना इलाज करा।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब हम रिस्क फैक्टर्स पे बात कर रहे थे।
0: देखिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो स्ट्रोक के अलावा 80% लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई जाती है।
1: हेलो हेलो हेलो।
3: हाँ हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: दीदी मैं बोल रही हूँ, राम प्रसाद टेलर गांव बड़ास हूँ।
1: नमस्ते जी।
3: राम राम साहब।
1: राम राम साहब जी। डॉक्टर साहब से आपका जो सवाल है वो विषय से संबंधित यदि है तो ज्यादा अच्छा होगा, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, कहिए।
3: हाँ जी हाँ जी
1: जी।
3: मारो प्रश्न कही लखवाड़ा थे ना जी, जिसे माता जी के जाओ तो वहाँ मिट जाओ।
0: देखिए बहुत
3: हॉस्पिटल में न मिटे को कारण का ही
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
3: वहाँ जाता है हॉस्पिटल में न मिटे वहाँ माता जी
0: के जाओ। देखिए आपका प्रश्न बहुत
3: थोड़ी जानकारी दी मैं, है ना?
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और आज के परिप्रेक्ष्य
3: में,
0: आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज बहुत लागू होती है। जैसे मैंने बताया हमारे पास लगभग 50-60% रोगी 24 घंटे के बाद आ पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और लकवे भी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई हल्का माइल्ड स्ट्रोक होता है, कोई मॉडरेट है, सीरियस सीवियर स्ट्रोक है।
1: जी।
0: तो गांव में धारणा है कि माताजी के ले जाएं, इधर मंदिरों में ले जाएं। तो उसके बाद रोगी वहां ले जाते हैं और हमने देखा गया है कि वहां कुछ रखने के बाद रोगी की जब कंडीशन बिगड़ती है तो अस्पतालों में आते हैं। अब ये ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हल्का स्ट्रोक हुआ या स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक मिमिक टाइप की चीज है, वहाँ चला गया, वहाँ तुरंत आराम मिल गया, तो ऐसे लोगों को लगता है कि हमें आराम आ गया। लेकिन समय की बर्बादी करना स्ट्रोक के अंदर बहुत बुरी बात है। 4.5 घंटे जैसे मैंने बताया कि बहुत गोल्डन पीरियड्स होते हैं, इसके अंदर यदि हम तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं और क्लॉट बस्टर दवाई का उपयोग करते हैं तो रक्त की नाली में जो थक्का जम गया है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखा गया है कि इस प्रकार की दवा का उपयोग करने के बाद रोगी को हमेशा की जो आजीवन अपंगता होती है उससे बचा जा सकता है और व्यक्ति अपना सामान्य रूप से जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार की अवधारणा को हमें जागृति पैदा करनी पड़ेगी,
1: इससे
0: बचना चाहिए। स्ट्रोक होने के बाद तुरंत अस्पताल में पहुंचे और अपना उपचार कराएं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रसाद टेलर जी। और डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर और बीपी, हाई बीपी की।
0: तो रिस्क फैक्टर में ब्लड प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: और ये देखा गया है कि रोगी को हमारे पास पेशेंट आते हैं, किसान इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और 4 साल पहले ट्रीटमेंट चला था और नॉर्मल हो गया, हमने दवाई बंद कर दी और हम डर भी रहे थे ऐसा नहीं उनकी इस दवा से आदत नहीं पड़ जाए। फिर हम कहते हैं भाई तुमने दवा बंद कर दी, अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर 150 या 200 आ रहा है, स्ट्रोक हो गया। तो रोगी को ब्लड प्रेशर की दवा का निरंतर चिकित्सकीय इलाज करना चाहिए और इवन लाइफ लॉन्ग चलने की संभावना भी रहती है बीपी की दवाइयों को।
1: जी हेलो।
4: हेलो दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: राजेश्वरी जी।
1: कहाँ से बोल रही हैं राजेश्वरी जी?

0: यही पास से बोल रही हूँ, कोटा से ही, बल्लभबाड़ी से।
1: बल्लभबाड़ी से, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल रखिए।
0: आपने जो भी बताया कि है ना कैंसर, जैसे धुल्लापन और ना डबल दिखना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है सर। और वो क्या है, कभी कभी है ना के नाम से अपने आप से, मतलब कभी आँखों में, कभी का मतलब एकदम से मतलब फड़कन होती है, जैसे आँखों में।
2: बिल्कुल आपके प्रश्न को मैं समझ गया। देखिए स्ट्रोक एक अटैक है, इससे अटैक अचानक से लक्षण आते हैं और रोगी के लक्षण बढ़ते हैं।
0: लेकिन हाँ, गोड़े में भी,
2: लेकिन जो लक्षण आप बता रही हैं, जिस प्रकार के लक्षण बहुत लंबे समय बार बार आ रहे हैं, तो लगता है ये आँख संबंधित बीमारी हो सकती है। इसका अपना तो आपको आँख संबंधित बीमारी है, उसे अपना उपचार करना चाहिए। जो ब्रेन स्ट्रोक में लक्षण आते हैं, वो अचानक से रोगी व्यक्ति बिल्कुल ठीक कार्य कर रहा है, अचानक अंधापन आ गया, आधा दिखने लग गया, बिल्कुल डबल दिखने लग गया, और उसके साथ में अन्य लक्षण भी आते हैं, हाथ पैर में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, चलने फिरने परेशानी, चक्कर, उसको हम लोग स्ट्रोक कैटेगरी में शामिल करते हैं। आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, निकटवर्ती आंखों के डॉक्टर को दिखाइए, उससे आपका उपचार हो जाएगा और आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हाँ, जैसा आपने हाई बीपी का बताया और ये बताया कि लोग दवाएं छोड़ देते हैं, ये एक बहुत बड़ा पहलू
2: बहुत
1: है ना,
2: क्योंकि स्ट्रोक में 80% लोगों को बीपी की बीमारी होती है। यदि बीपी का यदि प्रॉपर कंट्रोल कर लें तो स्ट्रोक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा रिस्क फैक्टर डायबिटीज, ये भी क्रॉनिक बीमारी है, इसका निरंतर लगातार उपचार कराएंगे तो आपको स्ट्रोक की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अन्य रिस्क फैक्टर जैसे लिपिड डिसऑर्डर, चिकनाई की मात्रा बॉडी में ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, या स्वयं को हार्ट की बीमारी है, एट्रियल फाइब्रिलेशन कॉमन है, यदि इस प्रकार की बीमारियां, उसे उपचार करने की आवश्यकता है
1: जी।
2: और अन्य रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि अल्कोहल का उपयोग करना
1: जी। हेलो,
3: हाँ मैडम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं जगदीश बोल रहा हूँ, यहाँ कोटा से, बजरंगगढ़
1: जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार जी। जी जगदीश जी, अपना सवाल रखे।
3: मैडम मैं सर से बात करना चाह रहा था।
1: बिल्कुल सुन रहे हैं सर आप।
2: हाँ जी बताइए
3: सर। मेरे माताजी को पिछले 18 जनवरी को स्ट्रोक आया था।
2: हाँ हाँ।
3: वो अभी इस वक्त बोलती तो है नहीं बिल्कुल भी, वोकल कॉर्ड में राइट साइड में है, पर मोशन उनका रुकता नहीं है, दिन में 5-5, 7-7 बार मोशन करती है।
2: आवाज न होने के अलावा और कोई लक्षण भी है उनके, चलने फिरने में दिक्कत, हाथ में कमजोरी?
3: चलती फिरती तो बिल्कुल भी नहीं है।
2: अच्छा, देखिए जो जिस तरह सिम्टम बता रहे हैं तो उनको बड़ा लेवल का ब्रेन स्ट्रोक हुआ होगा, जो मस्तिष्क के लेफ्ट साइड में हम लोग स्पीच एरिया होता है, यदि स्पीच के एरिया पूर्णतया खराब हो जाता है तो कभी कभी रोगी की जो आवाज है बंद हो जाती है, जिसे हम लोग एफेजिया बोलते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी का रोल महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मोशन रिलेटेड बात बता रहे हैं तो इस प्रकार की जो शिकायतें, हो सकता है कुछ पेट संबंधित बीमारी हो, है ना, तो उसको आप पेट के डॉक्टर को दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें आराम की संभावना रहेगी।
3: सर वो एक तो कुछ खाना भी नहीं चाहते और खुद खाते भी नहीं है, टोटल लिक्विड पे, मतलब पानी, हाँ, पानी और मतलब
2: बिल्कुल लिक्विड डाइट होने की वजह से कभी कभी फ्रिक्वेंट मोशन वगैरह होते हैं, तो उसको आप पेट के डॉक्टर को दिखा करके समस्या का निवारण करें। एवं जो स्ट्रोक के जो लक्षण है उनको थोड़ा सा प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी करेंगे तो कई बार ये भी देखा गया है कई साल बाद भी रोगियों को आवाज में इम्प्रूवमेंट होता है, बोलना शुरू कर देते हैं, आधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ लाभ होगा और माता जी को फायदा होगा।
3: उनकी एज भी तो 80+ है सर।
2: कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हार रहे, मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रोक की बीमारी में ये हिम्मत न हारने की बीमारी है, रोगी के लिए भी, परिजनों के लिए भी और चिकित्सक के लिए भी। हिम्मत ना रहे, मेहनत करिए और निश्चित तौर पे कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
5: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में

0: परेशानी तुरंत संपर्क करें।
1: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध।
2: टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत, और साथ ही हमने एक कॉल लिया लेकिन वो कट चुका है। तो डॉक्टर साहब, जैसा एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता देते हैं हम वैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, लकवा रोग, कारण, बचाव और उपचार की आधुनिक तकनीकें आज के हमारे कार्यक्रम का विषय, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर संजय जायसवाल। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो बीपी वाला था, ब्लड प्रेशर वाला, वो जवाब शायद तकरीबन पूरा हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, क्या वायु प्रदूषण भी रिस्क फैक्टर में आता है?
5: हाँ, देखिए ये रिसेंटली एडेड फैक्टर है स्ट्रोक के अंदर, और काफी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि वायु प्रदूषण हम लोग काफी देखने को मिल रहा है। तो स्टडी हुई, उसमें स्टडी में पाया गया कि लगातार वायु प्रदूषण की वजह से जो एंडोथेलियल फंक्शंस, वैस्कुलर एंडोथेलियम होती है, उनके अंदर डैमेज होता है। उस डैमेज की वजह से क्लोटिंग हो जाना, रक्त की नली में थक्के जम जाना, इस प्रकार की चीजें पाई गई स्टडीज के अंदर। उन्होंने ये बताया गया जब भी हैवी पॉल्यूशन चल रहा है और इस तरह की स्थिति है तो सभी को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे काफी हद तक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक और रिस्क फैक्टर नया ऐड हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जो लोगों को खर्राटे आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारे परिवार सभी को आते हैं, ये भी अपने आप एक बीमारी है। और जिन लोगों को खर्राटे की शिकायत होती है, ये देखा गया है कि उनको स्ट्रोक की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना एवं अन्य मेटाबॉलिक डिजीज की संभावना काफी ज्यादा होती है, तो इसका भी उपचार करना चाहिए।
4: जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, जैसा कि खर्राटे का आपने जिक्र किया, तो इसको लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं।
5: देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, खर्राटे एक गंभीर समस्या है, और जिन लोगों को खर्राटे की शिकायत होती है उनको क्या होता है, रात में बार बार नींद खुलती है, नींद डिस्टर्ब होती है, दिन में सोते हैं, और उन लोगों की जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि 3-4 दवा के बाद भी इनकी बीपी शुगर कंट्रोल नहीं होती है।
4: अच्छा।
5: और उनको स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि खर्राटे की बीमारी का इलाज कराते हैं तो सभी चीजें कंट्रोल भी होती है और आराम भी मिलता है।
4: जी। हेलो।
6: हेलो।
4: हाँ जी, कौन बात कर रहे
6: हैं? मैम नमस्कार।
4: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
6: जय हीरामन वावा रेडियो सोता सा हूँ, तहसील ईसागर, जिला अशोक नगर, MP से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ।
4: जी कुशवा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लेकिन अगर आपका विशेष संबंधित सवाल है तो हम कंटिन्यू करते हैं।
6: जी जी
4: जी, है आपका सवाल ऐसा?
6: जी, हमारा सवाल है मैम के जैसे अपना जो सर रहता है ना, तो एक साइड से दर्द करता है कभी कभी, तो इसमें मुख्य कारण क्या हो सकता है और एक कौन सी बीमारी के लक्षण है? एक साइड सर दर्द करना।
5: देखिए, आपका प्रश्न जो है आज के विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी बताया कि भाई दर्द है तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है जिसे हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। काफी ज्यादा संख्या पाई जाती है जिसमें कि एक साइड में दर्द हो सकता है, तो संभावना यह है कि आपको माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, तो उसका आप उपचार कराइए, डॉक्टर दिखाइए एवं अपना समाधान करें। धन्यवाद
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने श्रोताओं से एक बार फिर से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमें टेलीफोन कर रहे हैं तो विषय से संबंधित सवाल अगर आप करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी सुविधाजनक होगा और हमारे बाकी श्रोता जो हैं उनको भी डॉक्टर साहब से सीधे जुड़ने का मौका मिल सकेगा और हो सकता है कोई बेहतरीन ऐसा सवाल हो जिससे कि वो सबके लिए बहुत लाभकारी हो। ठीक है ना डॉक्टर साहब?
5: जी,
4: तो हमारे श्रोताओं से हमारी

0: गुजारिश है कि आप कृपया इस बात का ख्याल रखें। एक कॉल आ गया। हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जितेंद्र बात कर रहे
0: हैं। जी जितेंद्र जी, इतना धीरे बोल रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या?
1: नहीं मैम।
0: तो आप तो बहुत स्लो बात कर रहे हैं, बहुत मतलब एकदम लग नहीं रहा है कि रेडियो पे बात कर रहे हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होकर बात कीजिए।
1: डॉक्टर साहब से पूछना था।
0: हाँ पूछिए।
1: हमारे दादी जी है मैम, उनकी उम्र होगी 70 साल के ऊपर होगी मैम।
2: हाँ हाँ बोले।
1: तो सर अभी 15-20 दिन पहले उनको लकवा हो गया सर।
2: हाँ हाँ।
1: इनको डॉक्टर साहब को भी दिखाया।
2: हम्म।
1: और माता जी को भी ले गए थे सर, वो आराम नहीं है।
2: देखिए लकवे, जैसा हमने बताया, लकवे की बीमारी अचानक आती है और अचानक आने के बाद शरीर यदि मस्तिष्क के बड़े हिस्से में प्रभाव हो गया है तो उसका निवारण भी धीमे धीमे होता है। लकवे की बीमारी चिकित्सक का भी परीक्षण करती है, रोगी का भी करती है और इनके रिलेटिव्स का भी। हिम्मत न रखिए, उपचार कराएं, जो डॉक्टर ने बता रखी है, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को करेंगे तो निश्चित तौर पर माता जी का आराम होगा और अगले 2-4 महीने में वापस पुनः चलने फिरने लायक की स्थिति में हो जाएंगी। तुरंत आराम आने की संभावना कम रहती है।
1: पूछना था हमारे को।
2: हाँ
1: ये भी पूछना था, जैसे इस बीमारी से बचने के लिए सर सावधानी क्या?
2: हाँ बचाव की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम को सुनते रहिए, बचाव हम लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जैसे अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर कैसे प्रिवेंट करना है। प्रोग्राम को सुनते रहिए, हम लोग बचाव के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बीमारी होने के बाद 4.5 घंटे में यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आप ऐसे रोगियों को रक्त के थक्के को पिघलाने की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस इस्तेमाल से जो आजीवन डिसेबिलिटी आती है, जैसे आप कह रहे हो माता जी चलने फिरने लायक नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो रही, 4.5 घंटे में वो इंजेक्शन लगने से रोगी को ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और हमेशा की अपंगता से हम लोग बचा सकते हैं। प्रोग्राम को सुनते रहें, कंटिन्यू करें, फायदा होगा आपको।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक कहावत सुनी गई है, टाइम इज ब्रेन, इसको थोड़ा सा
2: बिल्कुल देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहावत थी टाइम इज मनी
0: जी,
2: तो हम लोग इसको यूज करते हैं टाइम इज ब्रेन। उसका इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रोक होने के बाद यदि ट्रीटमेंट न करवाते हैं तो 1 मिनट के अंदर 19 लाख न्यूरॉन्स, आप समझिए, 1 मिनट ट्रीटमेंट न लेने पे 19 लाख न्यूरॉन्स और कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं
0: जी।
2: और ये देखा गया है कि यदि रोगी का उपचार न करवाया, 1 घंटे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है स्ट्रोक का
0: जी,
2: तो उसका मस्तिष्क 4.5 साल जितना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है ब्रेन।
0: अच्छा 4.5 साल।
2: हाँ 1 घंटे उपचार न कराया तो 4.5 साल जितना और बूढ़ा हो जाता है, तो उसके स्ट्रोक होने के बाद थोड़ा आराम भी आता है, बाद में स्मृति कम होना, धीमे धीमे चलना, धीमे बोलना, इस तरह के बूढ़ेपन के लक्षण आते हैं। तो टाइम इज ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है और शुरू के 4.5 घंटे हम लोग उपचार शुरू करते हैं।
0: हेलो हेलो,
3: नमस्कार।
0: कौन बात कर रहे
3: हैं? अर्जुन राम जान बोल रहा हूँ, कर्मावास बालोतरा से।
0: बालोतरा से बहुत दूर से कॉल किया है आपने, सुन तो रहे ना आप पूरा प्रोग्राम?
3: सुन ही रहा हूँ।
0: अच्छा तो विषय से संबंधित सवाल है
3: ना?
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, कीजिए।
3: मैं जानना चाह रहा था ब्लॉकेज है माइंड की नस में कोई, क्या वो ब्लॉकेज ब्लॉक है वहां तक ही रुकेगा या वो खत्म भी हो सकता है?
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं, इलाज करते हैं, उसका हम लोग ये पता करते हैं बीमारी क्यों हुई है, क्यों हुई है और उसको यदि कोई इस तरह की चीज आती है, ब्लॉकेज है, तो उसको किस प्रकार से हम दोबारा होने से बच सकते हैं। तो जब भी स्ट्रोक ट्रीटमेंट होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हम लोग ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं, कैरोटिड एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें हम लोग ब्लॉकेज डिटेक्शन करते हैं। यदि गर्दन की नली में ब्लॉकेज पाया जाता है या मस्तिष्क की नली में ब्लॉकेज पाया जाता है और हमें लगता है कि पुनः स्ट्रोक की संभावना है इस रोगी को, तो उसके लिए विशेष प्रकार के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, एंडोटोमी है, एंजियोप्लास्टी।

0: जी है उनको करके और फर्दर रिकरेंस से हम लोग बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत लागू है चीज।
1: मुझे बताया गया बस जो है वहीं तक रुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पर ये छोड़ा नहीं सकते हम।
0: देखिए जैसे मैंने बताया आपको, जांच की जाती है, जांच पे उचित परीक्षण करते हैं और जांच करने के बाद ये लगता है कि भाई इस ब्लॉकेज को निकालने से लाभ हो सकता है या उस रोगी को बार बार रिकरेंट स्ट्रोक की संभावना है, तो उस कंडीशंस में ही इस प्रकार की प्रोसीजर्स करते हैं, चिकित्सक निर्णय करते हैं कि भाई इस प्रकार के प्रोसीजर की आपको आवश्यकता है या नहीं है। यदि आवश्यकता नहीं है, आपको मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल है, तो उससे काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है यदि आपको बिना ऑपरेटिव प्रोसीजर के काम हो रहा है और आगे भी संभावना कंट्रोल में है। धन्यवाद
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव, क्या पाया आपने कि किस उम्र के लोगों को ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक के आपके पास केसेस आते हैं, युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, या एज ज्यादा एज?
0: देखिए एज के बाद एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो है सी, लेकिन अभी देखा गया है कि लगभग 30-40% रोगी जो 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में लग के लक्षण पाए जा रहे हैं।
2: अच्छा?
0: हाँ, और महिलाओं में पाए जाते हैं। कुछ महिलाएं जैसे कि गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं।
2: अच्छा?
0: ये पीरियड्स बढ़ाने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ये हार्मोनल रिप्लेस होती हैं, तो इसकी वजह से रक्त नली के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है।
2: अच्छा,
0: तो इस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो रही है, देखा गया है, अखबारों में आता है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसमें रक्त गाढ़ा हो जाता है और क्लोटिंग की संभावना बढ़ जाती है और यंग एज में स्ट्रोक पाया जाता है
2: जी। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: नमस्ते, मेरा नाम अंकित है।
2: हेलो,
3: मेरा नाम अंकित है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: अंकित बात कर रहे हैं?
3: हाँ।
2: अच्छा अंकित जी, थोड़ा जोर से बोलिए ना।
3: हाँ, मैं ये बोल रहा था जैसे कि ये ज्यादा देर बिना खाए पे धूप में, कड़ी धूप में निकलने से भी हो सकता है।
0: हाँ जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका।
2: अच्छा।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, अच्छा प्रश्न है। ये देखा गया है जो जो महीने होते हैं, जुलाई अगस्त का महीना है जहाँ की ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है और ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उस स्थिति में स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो स्ट्रोक वैसे तो निरंतर 12 महीने होता है, लेकिन एक तो सर्दी में बहुत पीक होती है, ठंड में रक्त नली में सिकुड़ाव होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। और सेकेंड पीक होता है ह्यूमिड क्लाइमेट में, जुलाई अगस्त के महीने में भी ह्यूमिडिटी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो उनको स्ट्रोक की संभावना बढ़ती है। गर्मी के महीनों में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी, और सबसे बड़ा शुक्रिया कि आप MP में, मध्य प्रदेश में हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। थैंक्स अ लॉट जी डॉक्टर साहब। जब बीमारी का पता लगे कि एकदम से कि स्ट्रोक हुआ है, तो एक क्लोट बस्टर दवा होती है, तो क्या इसको देने से भी संभावना ठीक होने की ज्यादा बढ़ती है?
0: देखिए स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एक ही स्पेसिफिक मेडिसिन है।
2: अच्छा।
0: फिलहाल वर्तमान में जो कि हम लोग
2: जी
0: उस बीमारी को रिवर्ट कर सकते हैं या बीमारी में काफी हद तक फायदा कर सकते हैं, एक तो मेडिकल है जिसमें टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर की दवाइयों का इस्तेमाल करके क्लॉट बस्टर मेडिसिन को देकर के हम लोग बीमारी के लक्षणों को कम से कम कर सकते हैं, डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, लेकिन इस दवा का उपयोग मैक्सिमम 4.5 घंटे में ही उपयोग किया जा सकता है।
2: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर से लौटते हैं श्रोताओं के पास। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC Hunter अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्रीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

0: झालावाड़ रूड़कोटा।
1: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लेप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
1: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम सुनने वालों का स्वागत। आप सुन रहे हैं लाइव ऑन इन प्रोग्राम उत्तम स्वास्थ्य। आप के पास अब बहुत कम वक्त बचा है, आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 2941142 और एसटीटी कोड आपको लगाना है 0744। तो फोन कॉल करने के लिए बहुत कम समय है आपके पास। हेलो हेलो
4: जी मैडम, नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी। अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे खर्राटे के विषय में
3: जी,
4: तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खर्राटे जिसको आते हैं तो कौन से विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट कभी कभी आते हैं तो उनके इतना अधिक खर्राटे बजते हैं कि हम लोगों की नींद उचट जाती है, जैसे जनरेटर आवाज करता तैसे उनकी खर्राहट की आवाज रहती।
3: तो आप संक्षेप में सुनिए कि कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए।
4: जी जी जी जी
3: जी,
5: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका आज के परिप्रेक्ष्य में, और खर्राटे को स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में शामिल किया गया है, क्योंकि हम जो रोगियों में खर्राटे पाए जाते हैं उनकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनका कंट्रोल नहीं हो पाता और उनको स्ट्रोक हो जाता है। तो खर्राटे के विशेषज्ञ होते हैं, एक तो स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ भी खर्राटे के बारे में असेसमेंट करते हैं, रोगी को प्रॉपर स्लीप स्टडी होती है, 24 घंटे उसकी टेस्ट होता है मशीन लगा करके, उसका असेसमेंट करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सामान्यतया स्लीप स्पेशलिस्ट और श्वास रोग विशेषज्ञ इस बीमारी का जांच करते हैं, और बहुत से न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, वो लोग भी स्लीप मेडिसिन में काम करते हैं, वो लोग भी इस तरह की बीमारियों का असेसमेंट करते हैं और उसका उपचार करते हैं। हमारे हड़ौती क्षेत्र में सामान्यतया श्वास रोग विशेषज्ञ इस चीज का कार्य ज्यादा कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और रोगियों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
3: जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया
4: डॉक्टर साहब। और एक चीज और है कि उनको डायबिटीज और शुगर नहीं है, फिर भी उनको खर्राटे बहुत तेज आते हैं,
5: इसीलिए इनकी प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। एक इंडिपेंडेंट स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी हो सकता है बिना डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, लेकिन जिन लोगों को खर्राटे ज्यादा होते हैं उन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक की बीमारियां, ओबेसिटी, ये सब भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उनका परीक्षण करवाएं, उनका समुचित उपचार करवाइए। धन्यवाद
3: जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसा हो कि व्यक्ति को ये ख्याल रखे वो कि इसकी जरूरत ही ना पड़े, इलाज की आवश्यकता ही ना।
5: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
3: जी।
5: तो जैसे हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंसेस है, हार्ट की बीमारियां हैं, अल्कोहल कम इस्तेमाल करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और महिलाओं में गर्भ निरोधक जो दवाइयां होती है उनका प्रयोग न करें, एयर पॉल्यूशन से बचें, प्रॉपर हेल्दी डाइट लें
3: जी,
5: और अवेयर रहें बीमारी के बारे में, विटामिन वगैरह कमी है इनको भी दूर करें, अत्यधिक मानसिक तनाव से बचें, जो लोग नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको भी स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है
3: जी।
5: तो इन सब चीजों को करेंगे तो निश्चित तौर पर स्ट्रोक की संभावनाएं जो होने होती हैं उसकी 1/10 रह जाती है
3: जी।
5: बाकी नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, बढ़ती उम्र है, मेल सेक्स है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं
3: जी। हेलो
6: नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
6: धीरज रबारी गुजरात से बात कर रहा हूँ।
3: धीरज जी गुजरात से है ना, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप जल्दी से सवाल रखें अपना।
6: धन्यवाद। ज्यादातर इसमें ब्रेन स्ट्रोक में आहार जिम्मेदार है, आहार कम लेना, आहार ज्यादा लेना।

0: या फिर बीपी का कम होना ज्यादा होना ये जिम्मेदार है, क्योंकि आपने बोला सर ये सही बात है, 40 के आजू बाजू की जो युवान है उनसे पर ये ज्यादातर कहीं शौक होता है।
1: देखिए, इसमें जैसे बताया कि जो मॉडिफाई और रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बीपी, शुगर, डायबिटीज, लिपिड डिसऑर्डर, हार्ट की बीमारियाँ, पॉल्यूशन इत्यादि समस्त चीज़ें, डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर। प्रॉपर हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें और चिकनी चिकने पदार्थ हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें हैं, ट्रांस फैट जिसमें ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, उनको अवॉइड करें। एक्सरसाइज करिए और वॉक करें। इस प्रकार की जीवन शैली का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, स्ट्रोक की बीमारियां हैं, उनके होने की संभावनाएं बहुत बहुत कम हो जाएगी।
2: धीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, अब वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है और एक ऐसा प्रश्न कि जब ये बीमारी होती है तो लोग भ्रांतियों में अपना वक्त खराब करते हैं, तो बहुत संक्षेप में भ्रांतियों से बचने के लिए आप एक संदेश दीजिए।
1: देखिए, जैसा बताया कि स्ट्रोक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है
2: जी,
1: और शुरू के 4.5 घंटे इसमें गोल्डन पीरियड होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: 1 मिनट ट्रीटमेंट न लेने से 19 लाख न्यूरॉन्स, कई मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी फाइबर्स, नर्व फाइबर्स हमेशा के नष्ट हो जाते हैं, और 1 घंटे राहत न लिया तो मस्तिष्क हमारा 4.5 साल जितना और बुढ़ा हो जाता है, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। तो 4.5 घंटे में रोगी अस्पताल में पहुंचता है तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। ये विशेष प्रकार की दवाई होती है जिसको कि देने से रक्त नली में क्लॉट बन गया है उसको डिजोल्व होने की संभावना बढ़ जाती है, और रोगी के अंदर जो डिसेबिलिटीज हैं, जो अपंगताएं हैं, ये जो अन्य नुकसान होने वाले हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं।
2: हेलो
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
3: मैं डॉक्टर साहब से पूछने जा रहा था।
2: नाम बताइए।
3: सिकंदर
2: जी। सिकंदर जी कहाँ से बात कर रहे
3: हैं? अनंतपुरा कोटा।
2: अच्छा, जल्दी से पूछिए।
1: पूछिए
3: जी, मैं जा रहा था कि जो अभी 4.5 घंटे में ट्रीटमेंट ही करे हैं,
1: हाँ,
3: तो क्या ये आयुष्मान योजना में कर देते हैं आप ट्रीटमेंट?
1: देखिए, ये प्रश्न है जो कि आपको सरकार संबंधित जो भी चीजें होती हैं वहाँ से प्रश्न करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग भी करते हैं, सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट होता है, और हर चीज के अपने अपने पैरामीटर्स हैं। जिन लोग पात्र हैं इस योजना के अंदर उनका ट्रीटमेंट निश्चित तौर पर किया जाता है।
2: जी बहुत शुक्रिया सिकंदर जी। डॉक्टर साहब, अब एक कॉल और ले सकते हैं। हेलो हेलो
4: हेलो।
2: हाँ जी
4: हेलो।
2: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
5: जी जी जी, आपको डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ।
2: जी सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत। आप आवाज गूंज रही, कुछ साथ में चल रहा है क्या?
5: आवाज अब सही आ रही?
2: अब सही आ रही, बिल्कुल जी।
5: मेरा प्रश्न है कि इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो लक्षण दिखते हम डॉक्टर को दिखा ले।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। बी फास्ट, बी एफ एस टी, बी फॉर बैलेंस अचानक संतुलन बिगड़ना, ई फॉर आइज धुंधलापन होना, डबल डबल दिखना, एफ फेस अचानक चेहरे में टेढ़ापन होना, ए फॉर आर्म अचानक हाथ में पैर में कमजोरी होना, एस इज फॉर स्पीच आवाज का बिगड़ जाना। यदि अचानक किसी व्यक्ति के लक्षण हो जाए, चेहरे में टेढ़ापन, बोलने में दिक्कत, बैलेंस से बिगड़ना, इसका मतलब उसको स्ट्रोक की शिकायत हो गई है। देन टाइम, अचानक से अपने को टाइम पर अस्पताल में पहुंचना है और उस व्यक्ति का तुरंत उपचार कराना है। 4.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे तो वहां जांच के बाद आपको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के द्वारा इलाज होगा, और रोगी को हमेशा की जो डिसेबिलिटी होती है उससे हम लोग बच सकते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी।
5: जी, और दैनिक जीवन में हमें खान पान में क्या
2: वो अभी डॉक्टर साहब बताने वाले हैं बस।
5: जी ठीक
2: जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ब्रेक लेते हैं।
6: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्रीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, झालावाड़ रोड, कोटा।
2: और एक ये अंतिम ब्रेक था और अब वक्त बहुत कम हमारे पास बचा है, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि अब वो हमें टेलीफोन कॉल ना करें क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में चलते चलते बहुत संक्षेप में खान पान को लेकर के और दैनिक जीवन को लेकर के क्या सावधानियां बरती जाए?
1: देखिए, नियमित खान पान बहुत आवश्यक है
2: जी।
1: हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें
2: जी,
1: प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और जो भी

0: जिस व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी हो गई, स्ट्रोक की बीमारी हो गई है, उसको इस प्रकार की बीमारी में निरंतर आजीवन दवा लेने की आवश्यकता होती है। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं, कहते हैं साहब एक साल पहले स्ट्रोक हुआ था, हम ठीक हो गए थे, हमने दवाई बंद कर दी। तो ये परसेंटेज इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसमें नियमित उपचार, खान पान में कंट्रोल, एक्सरसाइज और चिकित्सक से निरंतर संपर्क में रहेंगे तो इस तरह की बीमारियों के पुनः होने की संभावना कम हो जाएगी और वो लोग अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स के जवाब बखूबी दिए, बहुत खूबसूरती से दिए, और हमारे जो श्रोता थे उन्होंने भी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया, उसके लिए उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने आज के इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज का हमारा विषय था ब्रेन स्ट्रोक, लकवा रोग, कारण बचाव और उपचार की नवीनतम आधुनिक तकनीकें। अब श्रोताओं, ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से डॉक्टर साहब की आवाज आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे श्रोताओं को हम बता दें, आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। करते हैं थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इससे पहले श्री मोदी ने कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद निवेश में हुई बढ़ोतरी की सराहना की।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, AI, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। 2 दिन की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में रुकावट के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक

0: डोमेस्टिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: राजस्थान देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनने के बाद अब राजस्थान नमो भारत नेटवर्क से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रस्तावित दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर नई दिल्ली के सराय कालेखां से शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए खैरथल, अलवर, नीमराना, बहरोड और सोतानाला तक पहुंचेगा। परियोजना के तहत कुल 196 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित किया जाएगा जिसमें 22 मुख्य स्टेशन प्रस्तावित है। राज्य में ये कॉरिडोर 91 किलोमीटर लंबा होगा और 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। RRTS ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिससे दिल्ली NCR राजस्थान के बीच आवागमन तेज होगा। राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिमी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह की ओर से गठित 6 सदस्यीय विशेष समिति कल कोटा पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर लूनी रिच्छा स्टेशन पर खड़े प्रभावित कोच का निरीक्षण किया और अग्निकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि ट्रेन के AC कोच में लगी आग की घटना के बाद रेल कर्मियों की तत्परता और आपातकालीन प्रबंधन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 2 दिन का मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई। वहीं 274 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर मामले दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। समूचा राज्य भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पश्चिमी गर्म हवाओं के असर से पारे में उछाल आया है। लू के थपेड़ों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। झुलसाती धूप को देखते हुए लोग दिन के समय घरों से निकलने में बच रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल 2 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज हुआ। वहीं 10 स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ और पिलानी सबसे गर्म रहे। वहीं जालौर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर सहित कुछ स्थानों पर रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर मापा गया। आज सरहदी जिलों और दक्षिणी पूर्वी भागों में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट बताया है। इन जिलों में दिन का पारा 42 से 47 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से चिन्हित ग्राम पंचायतों में जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संतृप्ति कैंप आयोजित हो रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल इस संबंध में 17 विभागों की बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने शिविरों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उधर जनजाति जिले डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान ने अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
2: जिला कलेक्टर देशलदान ने सभी विभागों को दायित्व सौंपते हुए इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि कोई भी पात्र

0: व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। अभियान के अंतर्गत 17 विभागों की ओर से 25 तरह के कार्य किए जाएंगे। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
1: राज्य सरकार ने विभिन्न खेलों के पदक विजेता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति को मजबूती से लागू किया है। इसके तहत अब तक 186 खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। इनमें क्रिकेट, शूटिंग, घुड़सवारी और कबड्डी सहित कई खेल शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले 1786 खिलाड़ियों को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच सहमति के बाद अब राज्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा। इससे दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत ट्रेन का संचालन हो सकेगा। प्रदेश में पश्चिमी गर्म हवाओं से दिन और रात का पारा बढ़ा। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। और राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पात्र वंचितों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 25 मई तक जनजाति गरिमा उत्सव का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज और साथ ही FM 102.6 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम आपके साथ।

0: चाहत फिल्म से कुमार सानू की आवाज में अगला गीत निदा फाजिल के अल्फाज और अनु मलिक की मौसिकी।
1: तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा,

किशोर कुमार की आवाज में प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से सुना आपने गीत। नगमा निगार थे इंदिवर और मौसीकार थे बप्पी लहरी। फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही FM 102 मेगा हर्ट्ज़ पर।

अब हमारी श्रोताओं को, विशेष तौर से हमारी श्रोता बहनों को हो रहा है अगले कार्यक्रम का इंतजार। तो आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त करते हुए हम लेकर हाजिर हैं आज का घर आंगन कार्यक्रम।

घर आंगन कार्यक्रम सुनबा वाली संदी बेणिया का ताई चित्रा बना को घणो घणो राम राम। और बेणियाओं, आशा करू चू कि मारी संदी बेणिया राजी खुशी होगी। बेणियाओं, आज अपन बात करेंगा त्वचा की देखभाल की। कई गर्मी का मौसम आता है, अपनी त्वचा रुखी रुखी होबा लाग जाओ छे। तो बेणियाओं, घणो तेज तावड़ो पड़ रहे छे और ताती ताती बाल भी चाल रही छे। और फिर ई धूल पसीना सू छे ने भी आपने घणो आ रहे छे। धूल पसीना सू आपणी त्वचा पर झाइया, खुजली, जलन और रूखापन जैसी समस्या होबा लाग जाओ छे। बेणियाओं, ई मौसम में त्वचा की देखभाल घणी जरूरी छे। गर्मी में पसीनो घणो आवे छे, जिसो धूल और गंदगी त्वचा सू चपक जाओ छे। दिन भर में बेणियाओं, दो तीन बार आपन साफ पानी सू मुंह धोता रेवा, जिसो त्वचा की गंदगी खड़ जावे। और मुंह पोछवा में भी आपन साफ रुमाल या टावली काम में लेवा। साथ ही बेणियाओं, गर्मी में पानी भी खूब पीवा, क्योंकि पानी की कमी सू भी त्वचा रूखी सूखी हो जाओ छे। दिन भर नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, फला को रस, ये सब पीता रेवा। ये सब शरीरी ठंडक देवा छे। और पर्याप्त पानी पीवासु तो शरीर मसु विषेला तत्व बार भी खड़ जाओ छे, जिसो आपनी त्वचा स्वस्थ रेवा छे। बेणियाओं, अब बात करा अपन तावड़ा सु बचाओ की। तो तेज तावड़ा सु आपनी त्वचा काली पड़ जाओ छे, जलन भी होबा लाग जाओ छे। तो तावड़ा में खड़बा सु बचा बेणियाओं। और जाओ भी होवे ना तो पूरी बाया का कपड़ा फेरा, छातो व पानी की बोतल लेवा और मुंडाई भी सूती कपड़ा सु ढांक लेवा। बेणियाओं, कुछ घरेलू उपाय कर भी अपन त्वचाई स्वस्थ रखान सका छा। जैसा कि एलोवेरा यानी कि गुआन पाठो, जो अपन सबका घर में होवे छे। तो इको गुदो रस अपन चेहरा पर हाथ पावा में रगड़ता रेवा, जिसु त्वचा ही ठंडक मल छे और जलन भी कम हो जाओ छे। गुलाब जल लगाबा सु भी आपनो चेहरो ताजगी महसूस करे छे, वो भी अपन लगाता रेवा। दही बेसन का लेप में भी टमाटर, आलू को रस भी मलार अपन लगा लेवा, इसो अपनी त्वचा साफ और मुलायम बनी रेवे छे। खीरा को रस भी अपनी त्वचा ही ठंडक देवे छे। और साथ ही तळियो भुण्यो कम खावा, ताजो भोजन करा। हरी सब्जियां, मौसमी फल, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज खावा, यहाँ से अपना शरीर में पानी की सही

मात्रा बनी रेवे छे जो अपनी त्वचा ही साफ रखना छे। और गर्मी का मौसम का लेखे ये सब बहुत जरूरी छे। एक लाराई बेणियों भरपूर नींद लेवा, व्यायाम करा। तो बेणियों भरपूर नींद लेबो बहुत जरूरी छे और पौष्टिक भोजन करबो भी अपनी अच्छी व सुंदर त्वचा का लेखे घणो जरूरी छे।

बेणियों, अब बात करेंगे अपन विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की, जो हर साल 19 मई का दिन यानी कि आज मनायो जाओ छे। ई मनाबा को उद्देश्य ईमानदारी, समानता, आपसी सम्मान, भाईचारा और बना कशा भेदभाव के खेल बाकी भावना ही बढ़ावो देबो छे। इको मुख्य उद्देश्य खेल केवल जीत बा कोई माध्यम कोई न, बल्कि अनुशासन, सम्मान और निष्पक्षता सीखवा को तरीको भी छे। खेल माई सिखावा छे कि जीत और हार जीवन को हिस्सो छे। आछो खिलाड़ी वही होवा छे जो नियमा को पालन करे छे। विरोधी खिलाड़ियों को सम्मान करे और ईमानदारी से खेल खेले। निष्पक्ष खेल को मतलब यो ही होवे छे बेणियाओ के खेला में ईमानदारी और खेल भावना ही बढ़ावो देबो छे। हार जीती सम्मान भाव से स्वीकार करबो ही निष्पक्ष खेल खेलाओ छे। तो विरोधियों के प्रति सम्मान करबो यही सच्ची खेल भावना छे।

बेण्यो, जल अपना जीवन को आधार छे। बना जल का मनुष्य, पशु, पेड़ पौधा और खेती काई भी संभव कोई ना। कई गांव में, शहरा में आज भी दूर दूर से पानी लानी पड़े छे। पानी घणो कीमती छे बेण्यो। कई बार अनजाना में आपन रोजमर्रा का काम में भी घणो पानी बर्बाद कर देवा छा। नल खुल्लो छोड़ देवा छा, जरूरत से ज्यादा पानी ढोला छा और नल खराब हो रहा हो तो वहीं भी अपन ठीक न करावा। तो बेण्यो, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर अपन जीवन प्रदायक जली बचा सका छा। जल छे तो कल छे बेण्यो। अगर आज अपन जल न बचाऊंगा तो अपनी आबा वाली पीढ़ी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सामनो करनी पड़ सके छे। तो जल बचावा बेण्यो, पेड़ लगावा। तो बेण्यो, आज ई विषय पर ही अपन एक पूर्व प्रसारित वार्ता ले रहा छा, जिको विषय छे जीवन प्रदायक जल और हमारी जिम्मेदारी। ई विषय पर जानकारी दे रही छे सीमा गौतम। तो सुना अपन या जानकारी।

जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल का एक नया नाम जीवन भी है। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल से ही हुआ है। प्राचीन समस्त सभ्यताएं और संस्कृतियां नदियों और झीलों के किनारे ही पनपी वो विकसित हुई हैं। अतः जल जीवन का आधार है, जीवन प्रदायक है। जल के अभाव में प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। यह मनुष्य के लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार है, मनुष्य के जीवन का

स्रोत है। सृष्टि के पांच भौतिक पदार्थों में अर्थात पांच तत्वों में भी जल का सर्वाधिक महत्व है। इस धरती पर जल के कारण ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों, बाग बगीचों आदि के साथ प्राणियों का जीवन सुरक्षित है। जीवन की सुरक्षा का मूल तत्व होने से कहा गया है, जल है तो जीवन है, या जल ही अमृत है। मनुष्य भोजन के बिना कई दिन जीवित रह सकता है, लेकिन जल के अभाव में कुछ ही दिन जीवन पा सकता है, क्योंकि भोजन के साथ साथ मनुष्य की संपूर्ण आंतरिक रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। अर्थात कहा जाए कि जल ही ऊर्जा है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। ऊर्जा प्राप्ति हेतु समस्त जैविक क्रियाओं का आधार भी जल ही है। कवि रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी की कमी से जीवन यापन असंभव है, इसलिए पानी का संरक्षण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जल संरक्षण की महती आवश्यकता आन पड़ी है। यदि अभी भी हम जागरूक नहीं हुए तो हमारी भावी पीढ़ियां जल संकट से जूझेंगी, और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि भूभाग पर जल संसाधन के रूप में 3/4 भाग उपलब्ध तो है, लेकिन इसमें से 97% जल खारा है, 2% जल बर्फ ग्लेशियर के रूप में है, और शेष केवल 1% जल ही हम सबके उपयोग के लिए अर्थात मानव उपयोग हेतु उपलब्ध है। जानकारी के अभाव में आज भी हम जागरूक नहीं हैं तथा पानी के बचाव के लिए प्रयासरत नहीं हैं। अब समय आ गया है जब हमें जल संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी तथा प्रकृति की इस विरासत को भावी पीढ़ियों को सौंपना होगा। जल चेतना लाना हमारा दायित्व है। हमारी प्राचीन संस्कृति में जल वर्षण उचित समय पर चाहने के लिए वर्षा के देवता इंद्र और वरुण का पूजन किया जाता था। इसी प्रकार हिमालय के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का भी स्तवन किया जाता था, फलस्वरूप धरती पर जल संकट नहीं था। हमारे राजा एवं समाज सेवी कुओं, तालाबों, पोखरों, बावड़ी, कुंड आदि के निर्माण पर पर्याप्त धन व्यय करते थे। वे जल संचय का महत्व जानते थे, किंतु वर्तमान काल में मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति और भौतिकवादी चिंतन के कारण उपलब्ध जल का ऐसा विदोहन किया जा रहा है जिससे अनेक क्षेत्रों में अब पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जल को जीवन रक्षक तत्व के रूप में संरक्षण प्रदान करें। जल स्रोत के रूप में हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है धरातल के ऊपर से प्राप्त जल, ये वर्षा जल है जो शुद्ध होता है लेकिन धरती पर पड़कर अशुद्ध हो जाता है। दूसरा धरातलीय जल है जो नदी, तालाब, झील, झरने आदि से प्राप्त होता है। तीसरा अंतर्धरातलीय जल है जो कच्चे व पक्के कुओं से, बावड़ी, बोरिंग, हैंडपंप आदि द्वारा प्राप्त होता है। वर्तमान में ये सभी जल स्रोत रीत रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, खनिज संपदा का बड़ी मात्रा में विदोहन, भूजल का अतिशय दोहन, विषैले रासायनिक अपशिष्टों का उत्सर्जन, जल प्रदूषण में निरंतर वृद्धि से प्रति व्यक्ति पर जल संकट गहराता जा रहा है। भूगर्भ का जल भी निरंतर कम हो रहा है। जल संकट के कारण अनेक वन्य जीवों का अस्तित्व मिट गया है। खेतों की उपज निरंतर घट रही है और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस जल संकट से बचाव हेतु जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। आओ आज बचाएं जल, संवारें अपना कल। जल संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर भी कार्य हो रहे हैं तथा जागरूकता लाने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण घर में, घर के बाहर, बाग बगीचों, खेत खलियान प्रत्येक स्थान पर करना चाहिए तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी उपाय काम में लाए जाने चाहिए। घरेलू जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। सिंक में बर्तन धोते समय, ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी बेकार तो नहीं बह रहा है। नहाते समय शावर या बाथ टब के स्थान पर
बाल्टी

मग का उपयोग करना होगा, गाड़ी धोते समय भी बाल्टी व कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। फ्लश टैंक कम बहाव वाला होना चाहिए या फिर आजकल दो बटन वाला यूज करना चाहिए, कम बहाव वाला और अधिक बहाव वाला। वॉशिंग मशीन का प्रयोग भी पर्याप्त कपड़ों की संख्या के आधार पर ही किया जाना चाहिए। बर्तनों को धोते समय पानी भरकर कार्य करना चाहिए। हमें अपने घरों से ही बचाव शुरू करना होगा। पाइपलाइन ठीक होने पर या टोंटी टपकने पर यथाशीघ्र ठीक करवाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त घर के बाहर भी हमें जल के बचाव हेतु प्रयासरत रहना होगा। सार्वजनिक पार्क, गली मोहल्ले, अस्पताल, स्कूल आदि में रिसाव या टोंटियां खराब होने पर तुरंत जलदाय ऑफिस या संबंधित व्यक्ति को सूचना देनी चाहिए। इससे हजारों लीटर पानी की बचत की जा सकती है। बाग बगीचों में पाइप के बजाय वाटर कैन से पानी देना चाहिए। दिन के स्थान पर रात में पौधों को पानी देने से वाष्पीकरण नहीं होता तथा पौधों द्वारा उसका पूरा उपयोग कर लिया जाता है। सिंचाई हेतु कम लागत की आधुनिक तकनीकों का यथा फव्वारा तकनीक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन तकनीक आदि का प्रयोग करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल शुद्धिकरण के साथ नई विधाओं का प्रयोग करना है। वाटर ओवरफ्लो अलार्म भी आजकल लगने लगे हैं। जल जागरूकता कार्यक्रम पानी की बर्बादी रोकने, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, प्रदूषण से बचाव हेतु चलाने चाहिए तथा हमें भी इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वर्षा जल संचयन हेतु आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी इमारतों पर वर्षा जल संचयन और भूगर्भ में भरण हेतु उपकरण लग चुके हैं। शुरुआत हो चाहे कहीं से भी हो, लेकिन हमें उसमें सहयोगी बनना है। छत का जल संचयन करके कपड़े धोने, पीने, बागवानी, बर्तन धोने आदि कार्यों में काम में लिया जा सकता है। इन कार्यों को प्रोत्साहन देना होगा, तभी भविष्य में जल संकट से बचाव संभव है। वृक्षारोपण भी जल संरक्षण का एक उपाय है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, छाया, फल, लकड़ी देते हैं, जमीन का कटाव रोकते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, बारिश लाते हैं, इसलिए सघन वृक्षारोपण भी आवश्यक है। बिना रोकथाम पानी निकालने से भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। भूमि के अंदर के जल के वितरण प्रबंधन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। जल सुरक्षा हेतु कानून का प्रावधान होना चाहिए, जो वाटर वेस्टेज को गैर कानूनी मानकर कार्यवाही कर सके। वाटर सप्लाई के पानी को हमें अपना पानी समझना चाहिए। पीने के लिए उतना ही पानी लें जितना पीना हो। पानी की कीमत समझें, क्योंकि एक ग्लास आरओ वाटर में तीन ग्लास पानी खत्म हो जाता है। आरओ मशीन, एसी के वेस्ट वाटर का उपयोग सिंचाई, कपड़े धोने, पोछा लगाने आदि कार्यों में किया जा सकता है। बोरिंग के स्थान पर हैंड पंप का उपयोग हो, जिससे आवश्यकता अनुसार पानी निकाला जाता है। वॉश बेसिन का फ्लो कम रखना चाहिए। सब्जियां, फल किसी बर्तन में पानी भरकर धोना चाहिए। गर्मी में टंकी का गर्म पानी हम यूं ही बाथरूम में बहा देते हैं। बाल्टी में भरकर इसे रखें और बाद में इसका उपयोग करें। प्लम्बर का हल्का फुल्का कार्य हमें स्वयं भी सीखना होगा। जो भी पानी बर्बाद करता है उसे रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि संसाधन देश का है, जिससे प्रत्येक मानव, प्रत्येक नागरिक प्रभावित होता है। अनमोल संसाधन को वेस्ट न करें और न ही करने दें, क्योंकि जल होगा तभी कल होगा। धरती अकेला ग्रह है जहां पानी वो जीवन है। मानवता के लिए जल प्रकृति प्रदत्त अनमोल उपहार है, जिसका संरक्षण करना और बचाना व्यक्तिगत के साथ अतिरिक्त हमारी सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी है। पानी बचाना जीवन बचाना है संपूर्ण विश्व के लिए। सकारात्मक बदलाव, जन जागरूकता कार्यक्रम प्रभावी भूमिका अदा करते हैं, जिसके अंतर्गत इको क्लब, विद्यार्थी जल संवाहक, जलदूत जल योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं तथा बदलाव ला रहे हैं। नीर और नारी
ये शब्द भी जल संरक्षण से जुड़े हुए शब्द हैं।

0: इसमें हम महिलाएं चाहे गृहिणी हो या कामकाजी सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब जल संरक्षण की चेतना जागृत हो रही है, जल को जीवन का आधार मानकर समाज में नई जागृति आ रही है। अमृतम जलम जैसे जन जागरण के कार्य भी चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता जागरूक अभियान चल रहे हैं। जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। जनता में जल की चेतना की जागृति लाने से जल संचय एवं जल संरक्षण की भावना का प्रसार होगा तथा धरती पर जीवन सुरक्षित रहेगा। हम भावी पीढ़ी को यह अनमोल विरासत सौंप सकेंगे। आज बचाएं जल, संवारें अपना कल। यदि आज न बचाया जल तो जल जाएगा कल। माना पानी का नहीं है मोल, पर जीवन के लिए है ये अनमोल। हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जल संरक्षण कर विश्व संवारें।
1: और अब सुनूंगा बेड़े अपने एक पीठ सो लोकगीत।

वर्ग का लोग ही स्वरोजगार शुरू करवा कर लेकर चलाएगी जी। ई योजना के भीतर महिला तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का लोग ही नया व्यवसाय शुरू करवा कर लेकर बैंक ऋण उपलब्ध करवाओ छे, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार का नया अवसर पा सके। ये योजना को फायदो महिलाएं व अनुसूचित जाति व जनजाति का लोग ले सके छे, जिकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गए। ये योजना के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ रूपया तक ऋण मिला छे। इमा आवश्यक दस्तावेज छावे छे, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, निवास प्रमाण, व्यवसाय योजना, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो। तो योजना को फायदो उठाओ और इको लाभ लेव। और अब बेणियो आपनो टाइम पूरो हो रहे छे, तो देव माई विजाजत चाला छा, राम राम।

बेणियों, स्टैंड अप इंडिया योजना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना छे, इकी शुरुआत 2016 में महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति

घर आंगन कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद हमारे श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक

0: टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
1: जी।
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है। तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे है, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में जैसे बताए दो चीजें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा।
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा।
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है
1: जी। आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40 वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गरम करेंगे, जब वो गरम करके ऊपर मलाई आती है वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉइल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा।

0: तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है।
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बताओ, और एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ

0: एक किडनी में यदि पथरी है तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
0: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको?
1: जी बिल्कुल।
0: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
1: राइट।
0: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के अब्सॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओ, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को

0: रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
1: जी जी जी, तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो। आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं, वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप छाछ या लस्सी लेते हैं, वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे

0: विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं. तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं. जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर.
1: अच्छा.
0: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है.
1: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए. कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है. लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा. तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
0: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है. वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है. तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए. जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए. जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में. एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए. तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है.
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन और अलग अलग सोर्सेस है और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा. हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
1: जैसे
0: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं. ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है बट वो उतनी ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है. खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी. अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए. जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है. इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है. वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है. तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है. और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है. तो एक अगर फल देखा जाए तो एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं. जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है.
1: जैसे ऑरेंज है,
0: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है. मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है. और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें. जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं. वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं. क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं. तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप ग्रहण कर रहे हैं.
1: बराबर है. तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना.

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है, जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका क्या काम होता है?
1: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है

0: ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
1: जी।
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
1: जी।
0: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे है बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है,
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
1: जी।
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे
1: जी। जी, और देखिए आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा
0: जी। ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए,
0: इश्क बुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है, तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। ना फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो।

0: कर रहे हैं, फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है, तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है, अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है, आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती, और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
1: है। जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है गर्मी में, अभी वाटरमेलन की

0: सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे ये गीत दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में, महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

Siap saja.

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक, नमस्कार।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
3: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन

0: भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
0: जी।
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
1: जी।
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमरेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओ, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
1: जी,
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?

0: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे बात नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।

0: पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
1: हा?
0: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
0: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
0: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बढ़िया ही रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।

0: तरह रोका टोका मत करो।
1: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बढ़िया ही रोकने वाली।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी

0: गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
1: गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
1: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
1: गौरमा,
2: हाँ,
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
3: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
2: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ गौरमा, सब तैयार है,
5: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे,
4: नहीं कटने देंगे,
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
6: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थी। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
2: ये है जंगल के उपकार,
3: मिट्टी पानी और बया,
2: मिट्टी पानी और बया,
3: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
2: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: रुक, आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
7: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
4: काटा पे चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
2: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
1: नहीं लगाने देंगे।
2: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
3: हाँ,
4: हम चिपक
3: जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
6: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों

0: के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 20 मई को प्रातः 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं और सर्जरी से निदान। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष अग्रवाल से बात कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बताएं, बुधवार को दिनांक 20 मई से को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे 2941142। एक और कार्यक्रम 20 मई 2026 शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। कृषि विभाग से कृषकों को सुविधाएं। श्री अतीश कुमार शर्मा संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान उपस्थित रहेंगे। आप टेलीफोन करके सीधे बात कर सकते हैं। तो श्रोताओं आप सुनना ना भूलें हमारा ये कार्यक्रम 20 मई 2026 को। इस कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर रहेंगे 2941142। STD कोड रहेगा 0744। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे श्रोता फिर से सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।

0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार, आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

कर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

0: आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा।

0: का। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे को लेकर प्रवासी भारतीय के साथ स्थानीय इटालियन कारोबारियों में उत्साह है। वे भारत में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कल राजसमंद जिले के राजपुरा दरीबा में हिन्दुस्तान जिंक संयंत्र का जायजा लिया। उन्होंने राजस्थान में प्रौद्योगिकी आधारित भूमिगत खनन, एकीकृत धातु गलाने की प्रक्रियाओं और सामुदायिक विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक का परिचालन विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 लाख टन से अधिक परिष्कृत उत्पादन क्षमता के साथ ये संयंत्र आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण पेश करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। इधर राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108.94 रूपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल 94.17 रूपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के निर्देश दिए। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने, रेबीज रोधी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेबीज से संक्रमित या खतरनाक कुत्तों की इच्छा मृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय करने के भी निर्देश दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पारदर्शिता की पहल को आगे बढ़ाते हुए भूमि आवंटन का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक जमीन के बदले जमीन से संबंधित मामलों में आवंटित भूमि का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या और आकार सहित अन्य जरूरी ब्यौरा शामिल किया गया है, जिससे आम लोगों और संबंधित पक्ष को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे और आसानी से समुचित जानकारी मिल सके। ये पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है। प्रदेश में ईंधन बचत मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका में अनुकरणीय पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित सभी कार्मिक साइकिल से दफ्तर पहुंचकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स मुकाबले से बाहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है। हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों

सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ। पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत, सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या है, यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए। ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म। और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद नादानी।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा, मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में

क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस स्पाइस, खो खो, धूम खेले हैं, क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे, क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं, और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन, आज भी भगवान से मानते हैं, बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, उसके सिर पर झूले की कील लग गई, बहुत सारा खून बहने लगा, मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है, चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर, बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर सात टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की, मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के डेढ़ पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंग की डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस की गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अटपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे

में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियाँ खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भुगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं, अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उन्हें भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध भर दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे, तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, क्या दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हमउम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है, स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नक्सीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखते हैं कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी

रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे और सबसे सबके से कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त रस्सी को ऊपर कर देते थे, राहे गिर गिर जाते थे, चक्कर में कई बार मार भी पड़े। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं, स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं, हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रहे हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं। बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

कि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए, हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी

प्रदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिस कर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार प्रदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लू का येलो अलर्ट जारी किया। IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के

0: मंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है।

0: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को

0: टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का

0: येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगनी में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए बहुत याद आए

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
8: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला जी। है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं है ना?
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म

0: साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा, वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
1: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
0: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
1: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
0: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
1: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है, विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
0: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों
0: के मुंह से। वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना,
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है, बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना, ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए

0: उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना।
2: चंदा है तू

0: मोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं
1: और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त, और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में तब तो और भी बुरा लगता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछतावा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या

0: सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपने ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
0: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उस पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
1: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
0: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती हैं, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही

0: आएगी या लेकर ही आएगा तब, और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है, लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती, लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी, तो देखो मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था, अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था, मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे, वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था, क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था, जी बिल्कुल रखता था, और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है, और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था, वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा, BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी, हाँ इधर 2 नाती अपने परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, इंटर में 1 ने 93% और 1 ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है, ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया
0: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कने बढ़ा देता है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है भाई। बिल्कुल सच बात है, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा, और 1 हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी, तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी,
1: तो गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल

0: करोड़ का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
0: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुँच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
0: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
0: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
0: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ।
0: जी,
1: अच्छा
0: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए
0: जी,
1: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
0: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भी आ गई डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने, वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
1: वाह वाह वाह, भाई ऐसा
0: कहाँ से कहाँ ये बात, देखिए
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ,

0: कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना, बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना, और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, इस समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ऐसा था
1: जी, इतना पेशेंस थे लोग, और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
0: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
1: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा हुआ।
0: जी जी।
1: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
0: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
1: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं
0: अभी? आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादियों मां मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने

0: अरे तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते मजा आएगा, मैं कोकिला बन बहन बन के आऊंगी। यकीन मान लो मेरे साथ आई उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में, मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था है कि नहीं मजेदार, और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ। फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती
0: अभी भी कायम है?
1: अच्छा।
0: जी हाँ।
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
0: जी,
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ू छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: दस शुक्रिया
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
0: अच्छा शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था, तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब

0: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूएट था और मैंने ड्यूएट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों तक। और यही नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई, मैं जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी के लिए और आज भी उनकी पारी चल रही है, उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था। और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे
1: आप? तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कोशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ था, जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के EMI ने मेरे 4 गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कविंद बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे ये हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत

0: सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना, क्रिएशन का शौक है। बस स्टेज पे करूँ मैं, या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ, या खुद गाऊँ। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ। और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना। हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दारुस्सलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।
1: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, ना केवल देश बल्कि विदेश में भी, कहीं भी और कभी भी। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, आपके दोनों रेडियो दोस्तों के साथ, जिनका नाम है, मैं हूँ निकिता
1: और मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी खुशी।
0: शाम का वक्त है और ये जो शाम है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे धीरे करके अपनी खूबसूरती को और बढ़ा रही है।
1: बिल्कुल।
0: और जो हमारे शहरवासी है ना, जितने भी शहरवासी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तपती धूप का सिलसिला खत्म हो और ये सुहानी सी शाम अपनी ठंडक हम तक पहुंचाए।
1: वैसे सुहानी शाम की शुरुआत तो हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम आ गए हैं शाम 5 बजे, तो शाम सुहानी तो होगी ही, लेकिन निकिता इस सुहानी शाम के पहले एक भयंकर दिन भी निकला है।
0: बिल्कुल।
1: तपता हुआ।
0: और मैंने ना खुशी नोटिस किया कि जब तुम आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी।
1: हाँ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि दिन में अपन 2 बजे आए।
0: बिल्कुल।
1: 2 बजे आए, लू भी चल रही है, गर्मी भी चल रही है, तो परेशान हो गए। मतलब स्कार्फ भी पहनो, समर कोट भी पहनो, सॉक्स भी पहनो, और पहन भी लो तो उसके अंदर सांस नहीं आए।
0: बिल्कुल। और ये जो गर्मी, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक एग्जांपल मैं ना बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि अपना फोन है, अपने पास एक ऑप्शन होता है कि उसकी ब्राइटनेस को ना हम अपनी मर्जी से कभी तेज कर लें, कभी कम कर लें, कभी तेज कर लें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमारे सूरज देवता है ना, इनकी ब्राइटनेस हम कम कर पाएंगे।
1: अगर कम कर रहे होते तो मुझे लगता है ऐसे तो नाइट मोड पे दुनिया चली जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो है ना, ये गर्मी मुझे लगता है कि ये तो प्रकृति का नियम है, मौसम अपने अनुसार ही चलेंगे, लेकिन हमें भी मौसम अनुसार चलना चाहिए।
1: हाँ, और इस मौसम के अनुसार चलने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी
0: चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहली बात, कि पहले तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि काम ना हो

0: दिन में दोपहर में आप बाहर ना ही निकलें।
1: हाँ, क्योंकि बहुत हीट वेव चलती है और हीट वेव से क्या होता है, हमें लू लगने का खतरा है।
0: बिल्कुल।
1: और सीधे किरणें सूरज की हमारे फेस पे, हाथ पे, इन पे पड़ती है।
0: और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, उनको इन्फेक्शन का खतरा
1: बहुत ज्यादा, और खासकर छोटे बच्चे।
0: बिल्कुल।
1: अभी गर्मियों की छुट्टियां चालू है तो छोटे बच्चे, उनको तो बाहर ही खेलना है, वो ये नहीं देखते कि दिन हो रहा है, शाम हो रही है या सुबह हो रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब यहाँ पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि उनको दिन में बाहर न निकाले।
0: और अगर वो शाम के समय खेलने जा भी रहे हैं तो कुछ सावधानियों के साथ आपको उन्हें बाहर भेजना है। जैसे कि सबसे पहले आपको घर से निकलते वक्त उन्हें पर्याप्त मात्रा में जितना वो पी सके पानी अच्छे से पिला के भेजें। वो वापस खेल कर लौटे तब भी उन्हें अच्छे से पानी पिलाएं, और एक वाटर बॉटल उनके साथ जरूर भेजें।
1: हाँ, और ये बात छोटे बच्चों तक ही सीमित नहीं है, ये
0: सबके लिए है।
1: हाँ, ये बड़े बच्चों तक भी सीमित है
0: कि आप बाहर जाएं तो प्लीज अपनी वाटर बॉटल साथ में लेकर जाएं। जब भी आपको डिहाइड्रेशन लगे, शरीर में पानी की कमी महसूस हो तो पानी जरूर पिए।
1: हाँ, पानी जरूर पिए, सूती कपड़े पहने, और अभी जो सीजनल फूड आ रहे हैं, फ्रूट्स हुए हमारे,
0: वेजिटेबल्स हो गए, और नारियल पानी हो गया, या फिर जितने भी ठंडी चीजें आप ले सकते हैं बॉडी को ठंडा रखने वाली चीजें, उनको लें और गर्मी को एंजॉय करें।
1: बस गर्मी को एंजॉय करते, एंजॉय से याद आया कि हम हमारे साथियों को सॉन्ग भी सुनाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनके एंजॉयमेंट का भी हमें ख्याल रखना है।
1: तो चलिए दोस्तों,
0: एंजॉय कीजिए
1: ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, युववाणी के सफर में आज साथ है मेरा और खुशी का।
1: बिल्कुल, और हम दोनों का साथ हो और कार्यक्रम खूबसूरत ना हो।
0: बिल्कुल, क्या बात कही है खुशी। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक तुम्हारा ध्यान ना कहीं और ले जाना चाहूंगी फिलहाल के।
1: बिल्कुल,
0: सवाल करती हूँ तुमसे एक कि कभी तुमने ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी में जो है ना सबसे ज्यादा असर किसी बड़ी बात का, किसी घटना का, या फिर कहें किसी बड़ी चीज का नहीं पड़ता, बल्कि छोटे छोटे से जो लोगों के व्यवहार है ना उसका पड़ता है। तो क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ?
1: हाँ बिल्कुल, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि किसी के व्यवहार का तो हमारे अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है
0: ना?
1: और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वही व्यवहार हमें अपने लोगों से मिले। जैसे घर में कोई हमारी बात नहीं सुने, बिना ही डांटते, कोई बात बिना ही हमें, कोई जैसे मम्मी होती है ना, बिना बात के चिल्ला देती है।
0: हाँ, और कई बार तो पूरी बात सुनते भी नहीं है,
1: सुनते भी नहीं है, तो वहाँ भी दुख होता है। दोस्त सबके सामने मजाक उड़ा दे,
0: बिल्कुल, और मजाक भी ऐसा जो दिल को चीर के बिल्कुल दूसरी तरफ निकल जाए।
1: लेकिन हमारी कभी कभी क्या होता है निकिता कि वो मजाक हमें लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना
0: बहुत ज्यादा
1: लग जाता है। या जब हम उदास हों और कोई कह दे तुम्हें तो हर बात का ड्रामा करना आता है।
0: और ये जो एक छोटी सी लाइन है ना खुशी, ये लाइन बस ऐसा लगता है कि है छोटी सी, लेकिन इसका जो असर होता है ना काफी बड़ा होता है।
1: हाँ, बहुत ज्यादा।
0: अब देखो ना कि अब किसी का प्यार से बात कर लेना, मतलब हमारा दिन कितना अच्छा बना देता है ना। और कोई हमारे साथ रूखा व्यवहार करे तो वो तो हमारे दिल को कितना अंदर तक दुखा देता है। और कई बार तो इंसान देखो कि बाहर से बहुत नॉर्मल लग रहा है और अंदर से कहीं ना कहीं वो सिर्फ इसलिए टूट रहा होता है कि उसको समझने वाला ही कोई नहीं होता।
1: और जानते हो, हम अक्सर कहते हैं ना कि प्यार लोगों को मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही।
0: लेकिन ना अब ऐसा मुझे लगता है ना कि सबके साथ ही होता है खुशी।
1: हाँ, ये मैक्सिमम सबके साथ होता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी फीलिंग नहीं समझ रहा, पर क्या पता हम जो कहना चाह रहे हो हमारे प्रेजेंटेशन का तरीका गलत हो।
0: बिल्कुल, और कई बार हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद हमने बात असल ढंग से जो कही जानी चाहिए थी वो हमने ना कही हो।
1: हाँ?
0: अब मैं ना तुम्हें कल ही की बात बताती हूँ।
1: हाँ,
0: मैं बाजार गई थी और एक छोटी सी दुकान थी, काफी मतलब भीड़ थी वहां पे दुकान पे, और एक बुजुर्ग से अंकल जो थे ना धीरे धीरे से सारा सामान पैक कर रहे थे और वो अकेले ही थे उनकी दुकान पे। अब लोग खड़े थे, भीड़ हो रही थी, अब गर्मी का मौसम तो तुम जानती हो गर्मी हो रही है, तो लोगों का मुझे लगता है पेशेंस भी कहीं ना कहीं वहां कम पड़ रहा था,
1: पारा चढ़ा का चढ़ा ही रहता है।
0: तो कुछ लोग चिल्लाने लगे कि अरे जल्दी करो ना, काम नहीं होता तो आपने दुकान क्यों खोल रखी है। और वो अंकल जो है बस चुपचाप सुनते रहे। और फिर ऐसा हुआ तो पास में एक लड़का खड़ा था, अब उस लड़के ने धीरे से कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी उम्र आपके गुस्से से ज्यादा बड़ी है। और तब ना खुशी पूरा माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे कि सबको वो बात काफी गहराई से समझ में आ गई।
1: बात गहरी भी थी और बहुत सही भी थी। कभी कभी एक इंसान की समझदारी बहुत सारी जो कठोर आवाज

0: होती है ना, उन पर असर कर जाती है।
1: बिल्कुल। और अब यही बात तो मुझे वहाँ समझ में आई कि सोचो अगर वही बुजुर्ग हमारे दादाजी होते, हमारे नाना जी होते या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स होते, तो क्या हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते या ऐसा व्यवहार उनके साथ होता तो हम सह पाते?
0: कभी नहीं,
1: है ना।
0: लेकिन यही तो समस्या है, हम दूसरों के दर्द को तब तक महसूस नहीं करते जब तक वो दर्द हमारे अपने घर तक नहीं पहुंचता।
1: और ये मुझे लगता है खुशी, ये सबसे बड़ा सच है, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई बात नहीं होती, हमारे ऊपर कोई दर्द नहीं गुजरता, हाँ। तब तक हम उस चीज को अंदर से महसूस नहीं
0: करते। अगर हमने कभी किसी को ऐसा मान लो हर्ट कर दिया तो वो बात हमें इतनी नहीं लगेगी। और जब तक वो कोई इंसान हमें सामने वाला सेम सिचुएशन पे हर्ट करे फिर हमें बहुत फर्क पड़ने लग जाता है।
1: और आजकल देखो ना कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ऑफिस हो गए, हर जगह पे ना लोग मजाक के नाम पे बस एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। हम वो कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक हद के बाद वो मजाक भी कहीं ना कहीं बुरा लगने लगता है।
0: और पता है आजकल तो एक छोटी सी चीज चल रही है, पता नहीं तुमने सुने ने सुनी हो, फिजिकल पर भी बहुत ज्यादा मजाक।
1: तो किसी के रंग को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, बॉडी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, हाँ बहुत सारी चीजें। या फिर ये भी देख लो ना कि किसी की जो है आर्थिक स्थिति को लेकर भी मजाक बनाया जाता है। और फिर लास्ट में लोग क्या बोलते थे कि अरे यार हम तो फन कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मजाक में बोला।
0: लेकिन मैंने शुरुआत में कहा ना कभी कभी यही मजाक हमें मजाक
1: नहीं, हाँ वही तो लगता नहीं है लेकिन वो सामने वाले को महसूस हो जाता है
0: यही। लेकिन सच ये है कि कभी कभी हमारा जो ये फन है ना, ये किसी की पूरी रातों की नींद उड़ा देता है और आंसू बन के बह जाती है।
1: और सबसे ज्यादा पता है दर्द कब होता है? जब इंसान अपनी परेशानी बताने जाए और सामने से जवाब मिले कि अरे तुम्हारी तो यही हमेशा की प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है, तुम क्या कर रहे हो, मतलब यही सारे जवाब जब मिलते हैं ना तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है।
0: उसे ऐसा लगता है कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। और हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है, किसी के घर की समस्या, किसी का अकेलापन, या फिर किसी का स्ट्रेस, किसी की जिम्मेदारियां, हमें पूरी कहानी नहीं पता होती, इसलिए व्यवहार हमेशा नरम होना चाहिए।
1: और मुझे लगता है खुशी कि एक अच्छा इंसान अगर किसी को कहा जाए ना, तो अच्छा इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे या फिर लोगों के सामने दिखावा करे, बल्कि अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी पर्सनालिटी को नेचुरल रखे, हाँ। यानी कि जैसा है वो वैसा रहे और अपने व्यवहार को वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे और ऐसा व्यवहार वो अपना बनाए जिसकी वजह से किसी का भी दिल ना दुख पाए।
0: हाँ ये तो है, क्योंकि जिंदगी में लोग हमारी शक्ल शायद भूल जाएं लेकिन हमारा व्यवहार कभी नहीं भूलते। एक टीचर का ही एग्जाम्पल ले लो कि टीचर का प्यार से समझाना और माँ का थकने के बाद भी मुस्कुराना, दोस्त का मुश्किल समय में साथ देना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना यही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।
1: वही। और एक बात जो तुमने कही ना खुशी की, जिंदगी में लोग हमारी शक्ल भूल जाएंगे, और ये होता है जिंदगी में ही होता है, एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ लोग ये भूल जाते हैं कि मैं उस समय पे कैसी दिखती थी, कैसा कॉम्प्लेक्शन था, कैसा क्या था, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत निकल गया थोड़ा सा तो वो उसे हमेशा याद रहे,
0: और अगर किसी की तारीफ निकल गई ना
1: तो वो हमेशा याद रहे,
0: हाँ, तो वो हमेशा ये याद रखेंगे कि हाँ इस इंसान ने मेरी तारीफ जरूर की थी।
1: तो खुशी क्यों नहीं हम आज से एक छोटी सी आदत डालते हैं, हम भी अपनाएंगे, हमारे सभी दोस्तों को भी अपनाने को कहेंगे कि किसी पे भी गुस्सा करने से पहले ना दोस्तों प्लीज आप उसकी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए, परिस्थितियां समझने की कोशिश कीजिए, और मजाक करना है एक हद में रहकर कीजिए, मजाक को मजाक ही रहने दीजिए।
0: क्योंकि
1: आप ये देखिए कि किसी का मजाक उड़ाने से पहले अगर हम सोचेंगे ना कि यही मजाक अगर किसी ने मेरे साथ किया होता तो मुझे कैसा लगता, और अगर हम किसी से पूछ लेंगे कि भाई आपको क्या परेशानी है, क्या हुआ, तो ये हमारी भावनाएं भी उससे जुड़ जाएंगी,
0: बिल्कुल
1: व्यवहार भी हमारा अच्छा रहेगा और वो इंसान हमें याद भी रखेगा हमारे व्यवहार के।
0: हाँ, क्योंकि कई बार किसी को सिर्फ सलाह नहीं, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार चाहिए होता है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान डूब रहा हो तो उस समय उसे तैरना नहीं सिखाया जाता,
1: बिल्कुल उसे बचाया जाता है,
0: उसे बचाया जाता है। और सोचो अगर हम उसे उस समय तैरना सिखाएं तो वो किस पारे पर चढ़ जाएगा और कितना गुस्सा करेगा।
1: लेकिन ना यहाँ पे एक बात ये है कि सबसे बड़ी दुख की बात एक ही नजर आती है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें रिस्पेक्ट दे, हम कहीं बैठे हैं तो हमारी पूरी बात ध्यान से सुने, हमें समझे, हमारा जो दर्द है, हमारी तकलीफ है उसे समझे, लेकिन होता उल्टा है।
0: हाँ,
1: होता क्या है, रिस्पेक्ट हम किसी को करते नहीं है, हम कोई बात कर रहा है उसकी बात बीच में काट देते हैं, हम किसी को समझने की कोशिश नहीं करते, किसी को तकलीफ है, किसी का दर्द है तो हम उसको पता नहीं क्यों साइड में रख देते हैं, और जब फिर खुद की बारी आती है ना तो फिर हम ये सोचते हैं या हमारे साथ ऐसा होना

0: चाहिए था, पर जब सामने वाले की आती है तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जज कर लेते हैं।
1: और दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे कीमती तोहफा पता है क्या है? अच्छा व्यवहार, जिसे देने में कुछ नहीं लगता लेकिन पाने में जिंदगी भर निकल जाती है।
0: बिल्कुल, और जो पाने वाला होता है ना खुशी, वो हमेशा याद भी रखता है कि उसने मेरे साथ ऐसा इतना अच्छा व्यवहार किया। हाँ। जब शुरू में हम बात कर रहे थे ना कि किसी को अगर हमारी मुस्कुराहट से अगर बहुत अच्छा लगता है और हम उसकी तरफ मुस्कुराते तो दिन बन जाता है। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी वो फ्री की मुस्कान

0: ऑब्वियसली वैसा ही हमें मिलेगा, लेकिन जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भी मिलेगा.
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ.

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: दोस्तों ये वाणी का सफर जारी है और नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है विज्ञान धारा, जिसमें आज हम बात करेंगे लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। और हम में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा और कुछ ने नहीं भी।
1: तो चलिए निकल पड़ते हैं एक ऐसे विषय को जानने के सफर पर जहाँ भविष्य का विज्ञान आकार ले रहा है।
0: लीगो इंडिया प्रोजेक्ट ये भारत की बहुत बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। ये परियोजना भारत को अंतरिक्ष और आधुनिकी भौतिकी अनुसंधान में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करेगी।
1: तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लीगो क्या है। दोस्तों ग्रेविटेशनल वेव तुमने बताया, इसका पता लगाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव है, ऐसी तरंगे हैं जो अंतरिक्ष और समय यानी कि स्पेस टाइम में कंपन पैदा करती हैं।
0: और दोस्तों इनका सिद्धांत सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। लीगो के पूरे नाम की बात करें तो लीगो का पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी।
1: और ये बहुत ही संवेदनशील लेजर तकनीक से काम करता है और ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जैसी विशाल घटनाओं से उत्पन्न तरंगों को पकड़ता है।
0: अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीगो इंडिया प्रोजेक्ट बन कहाँ रहा है, तो आपको बता दें ये प्रोजेक्ट हमारे भारत के महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाया जा रहा है और 2026 में इसका निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हुआ है, जो लगभग 2030 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: और इसमें क्या खास है ये भी जान लीजिए, इसमें दो विशाल 4 किलोमीटर लंबे टनल होंगे। लेजर किरणों की मदद से अत्यंत सूक्ष्म बदलाव मापे जाएंगे
0: और दुनिया के वैश्विक लीगो नेटवर्क का हिस्सा ये होगा, और जिसमें अमेरिका के लीगो, इटली का वर्गो और जापान का कागरा शामिल है।
1: हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, तो इस लीगो की कहानी कहाँ से शुरू हुई ये जानने के लिए एक्साइटेड हो ना। इसकी शुरुआत होती है अल्बर्ट आइंस्टीन से।
0: जी हाँ, करीब 100 साल पहले आइंस्टीन ने कहा था कि ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे मौजूद हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, लेकिन उस समय लोगों ने ये सोचा कि ये तो सिर्फ एक थ्योरी है क्योंकि किसी ने उन्हें देखा नहीं था।
1: हाँ।
0: और फिर दुनिया ने बनाई लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी मशीन।
1: सोच रहे हो ना कि ये मशीन कैसे काम करती है। लीगो में होती है तो दो विशाल सुरंगे लगभग 4 किलोमीटर लंबी, उनमें छोटी हो जाती हैं और लेजर बीम्स।
0: यानी कि जब उसके अंदर लेजर बीम्स को छोड़ा जाता है और फिर कहीं ना कहीं एक इंतजार रहता है एक बेहद छोटे से बदलाव का, जो शायद ब्रह्मांड के किसी कोने के रहस्य की निशानी हो। और बदलाव भी इतना छोटा होता है खुशी की, तुम देखो हमारा जो बाल है ना, इसकी मोटाई है उससे भी कई लाखों गुना कम।
1: बताओ कितनी अनोखी बात है।
0: और दिमाग में सवाल एक ये भी आता है कि ये मशीन है या फिर जादू, लेकिन

0: तो ये सच है।
1: हाँ, और एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना कि क्या कभी पहले ऐसा बदलाव महसूस किया गया है या पाया गया है? जवाब हाँ, 14 सितंबर 2015 दुनिया के वैज्ञानिक अपने सिस्टम्स देख रहे थे, अचानक एक बीप।
0: ये बीप जब बजी एक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। पहले लगा मशीन में खराबी है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वो आवाज थी दो ब्लैक होल्स के टक्कर की।
1: मतलब मानव इतिहास में पहली बार ब्रह्मांड की आवाज सुनी गई थी, यानी ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाया गया था, जिसके लिए 2017 में भौतिकी का नोबेल प्राइज भी दिया गया।
0: ये प्रोजेक्ट हमारे भारत में बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें कई फायदे भी होंगे। ये विज्ञान में भारत की बड़ी उपलब्धि साबित होगी, क्योंकि भारत अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में विश्व स्तर पर मजबूत पहचान बनाएगा।
1: हाँ।
0: नई तकनीकों का विकास होगा, लेजर टेक्नोलॉजी, वैक्यूम इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स और सुपर कम्प्यूटिंग जैसी तकनीकों में प्रगति होगी।
1: हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए नए अवसर भी खुलेंगे, जैसे फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और डाटा साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें रिसर्च के नए अवसर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया, अमेरिका सहित कई देशों की संयुक्त परियोजना है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलेगा।
0: जब ग्रेविटेशनल वेव्स का पता चलता है ना दोस्तों, तब साइंटिस्ट ब्रह्मांड की उन घटनाओं को समझ पाते हैं जिन्हें सामान्य टेलीस्कोप से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे ब्लैक होल कॉलिजन, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर या फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारी विज्ञान धारा का आज का विषय, जिसका नाम है लीगो इंडिया परियोजना।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी खुशी, और मेरे साथ हैं,
1: हाँ मैं हूँ निकिता। वैसे खुशी, जिंदगी में ना जीतना बहुत लोग जानते हैं।
0: हाँ।

0: ये तो बात है।
1: अब वो जीतना किसी भी तरीके से हो सकता है, कि जिंदगी में जीतना, किसी खेल में जीतना, किसी और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी जिंदगी में,
0: रिश्तों में
1: बहुत सारी होती है, लेकिन ईमानदारी से जीतना और हार कर भी मुस्कुराना, ये हर किसी के बस की बात नहीं।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो सिर्फ खेल नहीं जीतता बल्कि लोगों का दिल भी जीत लेता है।
1: और इसी खूबसूरत सोच को समर्पित है हमारा आज का दिन, यानी कि वर्ल्ड फेयर प्ले डे।
0: दोस्तों, वर्ल्ड फेयर प्ले का मतलब है सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है, स्कूल में, दोस्ती में और प्रतियोगिताओं में।
1: खुशी, तुमने स्कूल की बात की ना, तो मुझे ना मेरे स्कूल के दिन याद आ गए,
0: है ना?
1: स्कूल में कैसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ पे तरह तरह के खेल होते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। उस टाइम इतनी समझ नहीं थी हमारे अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस समय ऐसा होता था ना कि जहाँ जिस मोड़ पे ऐसा लगता था ना कि अब हम हारने वाले हैं, तो वहां से ना एक मतलब कहते हैं कि वापस एक नया मोड़ आता था जहाँ पे हम पूरा गेम बिगाड़ देते थे।
0: और पता है उसको क्या कहते हैं?
1: चीटिंग।
0: हाँ बिल्कुल चीटिंग। और पता है जब हम गली मोहल्लों में भी घर पे खेलते थे तब भी ये सीन होता था कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर हम आउट होने वाले हैं तो फिर के नहीं नो बॉल है।
1: हाँ,
0: ये तो वाइट बॉल
1: और
0: है।
1: अगर उसके अंदर कंडीशन ये कि अगर बैट मेरी है या बॉल मेरी है तो फिर तो गेम पूरा अलग ही अंदाज़ हो जाता है। नहीं, मेरा बैट है मैं तो अब नहीं खेलने दे रही, मेरी बॉल है अब तो मैं नहीं दे रही।
0: हाँ तो यही है फेयर प्ले।
1: हाँ, और जहाँ पे ना हम क्या करते हैं, बिना धोखा दिए खेलते हैं, बिना किसी को नीचा दिखाए खेलते हैं, ईमानदारी हमारे पास होती है, हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, यही सब तो हमारा आज का दिन हमें बताता है, सिखाता है।
0: और असली फेयर प्ले, प्ले का मतलब यहाँ खेल से तो बिल्कुल नहीं है। केवल हाँ हम के भाई खेल से ही समझें, फेयर प्ले का मतलब है कि रिश्तों में हम अपनी अच्छी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, बातचीत करना हो।
1: और आज के टाइम पे ना लोग जल्दी जीतना चाहते हैं, फटाफट से,
0: और खासकर हमारे जेंजीज, उनमें पेशेंस बहुत कम है।
1: लेकिन दोस्तों याद रखिए, गलत तरीके से आपको मिली हुई जीत बिल्कुल लिमिटेड टाइम की खुशी देती है।
0: हाँ।
1: लेकिन अगर आप सही तरीके से जीतते हैं और फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर आपको हार भी सामने करने मिलती है तो आप एक तरीके से देखेंगे कि वो एक सम्मान के रूप में आपको
0: महसूस होता है। जिंदगी में भी एक हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।
1: बिल्कुल, और सच कहें तो ना कि जिंदगी में जो एक खेल होता है ना, वो उसका एक सबसे खूबसूरत नियम होता है फेयर प्ले, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आज विश्व फेयर प्ले दिवस पर हम सब एक छोटी सी कोशिश करें कि हम अपनी पढ़ाई, अपने रिश्ते और अपने सपनों की दौड़ में ईमानदारी और सम्मान को कभी पीछे ना छोड़ें।
1: पढ़ाई की तुमने बात की ना, तो यहाँ पे मुझे एग्जाम से याद आ रहे हैं कि एग्जाम में ना ऐसा कई बार होता था कि हमें कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हमने इधर से पूछ लिया उधर से पूछ लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं चीटिंग हुई ना।
0: हाँ, और ये भी चीटिंग हुई। और जैसा थोड़ा सा कहीं जैसे पेपर आउट करने को लेकर बात होती है आजकल, थोड़ा सा सुनने में आ रहा है, तो ये भी उन बच्चों के लिए थोड़ा हानि हो जाती है जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हाँ हम बात कर रहे हैं ना कि असली जीत वही होती है जिसमें मेहनत भी हो, सच्चाई हो और दूसरों के लिए सम्मान भी हो, तो इन सब बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो यही तो फेयर प्ले कहलाता है।
0: बिल्कुल, यही फेयर प्ले है। इसलिए फेयर प्ले खेलिए, दिल से खेलिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए।
1: और फिलहाल मुझे लगता है खुशी, हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए हमें छोटी सी कोशिश करनी है, और उस कोशिश का नाम है एक खूबसूरत सा नगमा।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है उन लोगों की जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से देश को नई दिशा दी।
1: बिल्कुल खुशी। और आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही एक शख्सियत की कहानी, जिनकी सादगी, ईमानदारी और नेतृत्व आज भी लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर करता है।
0: बिल्कुल। तो निकिता, और आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में।
1: नीलम संजीव रेड्डी,

0: इनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और वो एक महान राजनीतिज्ञ थे।
1: और जिन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और पता है भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि वे एक निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं।
0: बिल्कुल, और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना कॉलेज छोड़ दिया था।
1: और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे सक्रिय भी रहे और 1940 से 1945 के बीच कई बार जेल भी गए।
0: वे भारत का संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा के सक्रिय सदस्य भी थे और 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे।
1: और पता नहीं कि उन्होंने केंद्र सरकार में इस्पात, खान, परिवहन और नागरिक उड्डयन और पर्यटन और जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला।
0: दोस्तों, उनकी सादगी इतनी मशहूर थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आने दिया। वे हमेशा आम लोगों की तरह सहज और विनम्र बने रहे
1: और शायद यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श इंसान के रूप में याद करते हैं।

0: दोस्तों ऐसा ही एक और नाम है इतिहास के पन्नों में, जिसे सुनते ही दिल में देशभक्ति की ज्वाला कहीं ना कहीं जल उठती है।
1: बिल्कुल।
0: और वो वीर जिसने अंग्रेजों की ताकत के सामने अपने घुटने कभी नहीं टेके और जिसने अपने स्वाभिमान और अपने देश के लिए संघर्ष का रास्ता चुना।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के महान योद्धा नाना साहेब पेशवा के बारे में। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है।
0: दोस्तों जब भी भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो मन में कई वीरों की तस्वीर उभरती है, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी, नाना साहेब पेशवा, जिनका असली नाम धोंडू पंत था और वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे।
1: हाँ, और बचपन से ही उनमें नेतृत्व की क्षमता थी। शाही माहौल में पड़े बड़े नाना साहेब को राजनीति और प्रशासन की अच्छी समझ थी, लेकिन अंग्रेजों की नीति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब बाजीराव द्वितीय का निधन हुआ तब अंग्रेजों ने नाना साहेब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी। अब सोचिए दोस्तों, किसी का अधिकार छीन लेना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, वो आत्मसम्मान पर भी चोट पहुंचती है।
0: और यही चोट धीरे धीरे विद्रोह में बदल गई। नाना साहब ने ये महसूस किया कि अंग्रेज सिर्फ शासन नहीं कर रहे हैं बल्कि भारतीयों के अधिकार और सम्मान को भी कुचल रहे हैं। फिर आया वो समय जिसने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी, साल 1857।
1: 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठ रही थी और कानपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला नाना साहेब पेशवा ने।
0: उन्होंने सैनिकों और आम जनता को एकजुट किया, लोगों के दिलों में आजादी की जो चिंगारी थी उसे आग बना दिया और उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी घबरा गए। कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती भी दी।
1: और दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाता, वो हमें हिम्मत भी सिखाता है। और नाना साहेब की कहानी यही बताती है कि जब इंसान अपने अधिकार और अपने देश के लिए खड़ा होता है तब उसकी आवाज बहुत ताकतवर होती है।
0: खुशी, कई बार हम ये सोचते हैं कि एक इंसान क्या बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा किसी एक साहसी कदम से शुरू होता है। नाना साहेब ने भी वही कदम उठाया था और उन्होंने ये साबित भी किया कि सम्मान और स्वतंत्रता किसी भी इंसान के लिए सबसे अनमोल रत्न होते हैं।
1: और दोस्तों, सबसे खास बात कि नाना साहेब का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नेपाल

0: चले गए थे और कुछ कहते हैं कि उन्होंने गुप्त जीवन बिताया, लेकिन चाहे उनका अंत रहस्य हो, उनका साहस कभी धुंधला नहीं पड़ा।
1: आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो महसूस होता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसी भावना जो इंसान को अपने से पहले देश के बारे में सोचने की ताकत देती है। तो मुझे लगता है खुशी, कहीं ना कहीं हमें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल निकिता, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं गीत संगीत की तरफ
1: और सुनवाते हैं आपको एक नगमा।

0: दोस्तों हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है ना कि हम जितना चाहे साथ में वक्त बिताना उतना ही वक्त कम पड़ जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम को जब हम एंडिंग की ओर ले जा रहे हैं ना, तब चलते चलते आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए, अच्छे से रहिए, गर्मी में अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और इसी के साथ आपके दोनों रेडियो दोस्त निकिता को
1: और खुशी को
0: इस कार्यक्रम युववाणी से आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में

0: दस्तयारी किया और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की ओर।

एक विशेष सूचना। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार यानी कि कल दिनांक 20 मई को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं और सर्जरी से निदान। जो भी श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष अग्रवाल से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार यानी कि कल 20 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक रहेगा।

हमारे टेलीफोन नंबर है 07442941142। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 07442941142।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें ऑल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने से अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को देश भर में महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य को कोयले की निर्बाध आपूर्ति, तकनीक आधारित खनन और खनिजों के बेहतर दोहन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के दूरदर्शी नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण देश के खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और निवेश अनुकूल वातावरण से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि रक्षा, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इन खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में है। उन्होंने खनन से जुड़े मुद्दों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में निवेश और उत्पादन बढ़ सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाड़मेर और बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दोहन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण से राज्य में चिन्हित साइट्स की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि इस भूमि का उपयोग अन्य कामों में नहीं किया जा सके। बैठक में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्त उपक्रम तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक और राज्यस्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य के सभी टर्मिनल, डिपो और रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से सामान्य है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रख रही हैं। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने, घबराकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करने और ईंधन की उपलब्धता के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आज झुंझुनू प्रवास के दौरान लोगों से ईंधन बचाने की अपील की।
1: ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रीतें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था, लेकिन मैंने भी काफिले में बना कर हमारी ज्यादा गाड़ी साथ नहीं गई, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में है और ये साइंटिफिक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी

0: कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राज्य सरकार है, उसके ऊपर निश्चित रूप से काम होगा और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
1: इस बीच आज सवाई माधोपुर जिले में 11 पेट्रोल पंप्स और मापतौल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद आज उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर की आपूर्ति पर 30 मिलीमीटर पेट्रोल कम देना पाया गया, जिसके बाद संबंधित पंप के नोजल सीज कर दिए गए। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं और 4,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई के तौर पर सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण और कूटनीतिक संदेश तथा आर्थिक संकल्प को एक साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने गहराई तक वार करते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को तोड़ दिया। सेना प्रमुख ने ये बात नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत को शांति सुनिश्चित करने, विकास की गति को तेज करने और वैश्विक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ के साथ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस श्वानों को हटाने के अपने पहले के आदेश में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर कुत्तों के हमलों की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया गया है। इनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 9 अत्याधुनिक ई बस डिपो बनाए जा रहे हैं। आज जयपुर में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई परिवहन सेवाओं और बसों की खरीद प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ई बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार करने का फैसला किया गया। बेड़े में अगस्त माह तक 144 ब्लू लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आज पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और पार्किंग सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और रेल संरक्षा मापदंडों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कोटा के मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अब सौर ऊर्जा आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से घने जंगलों में स्थित प्राकृतिक आवास और कृत्रिम जल स्रोतों पर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकारियों की गतिविधियों को रोकने में यह प्रणाली बेहतर कारगर साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से वन्य जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक

0: अनेक डेटा जुटाने और उनकी टेरिटरी की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों शेखावाटी क्षेत्र और कोटा संभाग में भीषण लू का प्रकोप जारी है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है और तेज गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने और गर्मी में बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की
0: तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ ही ओआरएस कॉर्नर भी बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। वहीं विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल मैच को देखते हुए जयपुर में यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस वर्ष अगस्त तक 500 ई बसें चलाई जाएंगी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अगले एक सप्ताह तक सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी में हम बात करेंगे हालिया खबरों की, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों की, ग्राम रथ अभियान की और भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपायों की। चिट्ठी की शुरुआत में सबसे पहले बात क्षेत्र की प्रमुख फसल के बारे में। चित्तौड़गढ़ देश के प्रमुख अफीम उत्पादक जिलों में शामिल है। यहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की ओर से जारी विशेष लाइसेंसों के जरिए सीमित और वैध तरीके से अफीम खेती की जाती है। हर साल किसानों की ओर से उत्पादित गुणवत्ता के आधार पर सरकारी खरीद और तुलाई केंद्र बनाए जाते हैं। खासतौर पर यहां दो तरीकों से अफीम पैदा की जाती है, गम और CPS पद्धति। गम पद्धति में पौधों में चीरा लगाकर अफीम का दूध निकाला और सुखाया जाता है। वहीं सेंट्रलाइज्ड पॉपी स्ट्रॉ CPS पद्धति में बिना चीरा लगाए सीधे डोडों की तुलाई की जाती है। हाल ही में जिले में अफीम तुलाई प्रक्रिया पूरी हुई। नारकोटिक्स विभाग ने 3 खंडों के 756 गांवों के करीब 16,500 किसानों से अफीम खरीदी। इनसे लगभग 1,35,000 किलो अफीम खरीदी गई। इसके लिए पहले और दूसरे खंड के किसानों को लगभग 15,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं तीसरे खंड के करीब 1,000 काश्तकारों को 5,61,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। CPS पद्धति के तहत 684 गांवों के 4,800 किसानों को 5,59,00,000 रुपए का भुगतान किया गया।

0: जिला कलेक्टर डॉ मंजू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने पीने के पानी की समुचित आपूर्ति को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पर्याप्त और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बंद पड़े आरओ की जल्द मरम्मत करवाने, हैंडपंपों के पास सोखता खड्डे बनवाने और जल संरक्षण के कामों में तेजी लाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी के समय लू और तापघात की आशंका रहती है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और श्रमिक वर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरदर्द, तेज बुखार होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। उन्होंने आमजन को तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी। जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। 25 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ ही गांव ढाणियों तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाए और इस मुहिम में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आदिवासी अंचलों में सरकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन दिनों देश भर में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। इसे जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनजातीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के 158 आदिवासी बहुल गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आदि सेवा केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने बेगू के जोगणिया माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री बिरला ने राजपूत समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है, साथ ही एकता और भाईचारे की भावना में भी मजबूती आती है। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से करीब 91,000 से अधिक प्रकरण निस्तारित किए गए। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य सरकार रे साफ नीतियां राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रातौर सामी आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवण नट्यो। प्रदेश माए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावण सारू इस साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। और राज्य रा घणखर हलका माए जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। आवता एक सप्ताह ताई सरहदी हलका माए पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण री शंका। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश ने क्रिटिकल मिनरल्स रो खास केंद्र बनावण सारू केंद्र और राज्य सरकार मिलर काम करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी री मौजूदगी माए आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे राखी जी आला दर्जारी मीटिंग माए ओ फैसलो करी जियो। मीटिंग माए मुख्यमंत्री बाड़मेर और बालोतरा रा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स माए मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स जुड़ियो नोडल अधिकारी नियुक्त करण रा हुकम दीना। वे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण रा अहलकाराओं राज्य माए पिछाण करीजी ठोड़ा ने जानकारी देवन बाबत कहो। इ मौके केंद्रीय मंत्री रेड्डी कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री आगे री सोच

0: नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे कारण देश माए जमी हेतों खनिज निकालवारा हल्का माए घणो सुधार फियो है। वे कहो कि राज्य सरकार री साफ नीतियां और निवेश रे अनुकूल वातावरण राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर सामी आ रियो है। श्री रेड्डी कहो कि राजस्थान माए रक्षा सूरज री रोशनी बिजली बनावन और मोटर गाड़ियां बनावन रा हल्का माए आ खनिजा री बढ़ती मांग पूरी करन रो बूतो है। वे प्रदेश माए निवेश और उत्पादन बढ़ावन सारू खनन नु जुड़िया मुद्दा रा टेम सर निपटारा माथे जोर दीनो। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा कार्यकारी निदेशक और राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति रो भरोसो दिरायो है। वे बतायो कि दुनिया माए मौजूदा हालात रे कारण उपजी अनिश्चितता रे बावजूद राज्य रा सगला टर्मिनल डिपो और पेट्रोल पंप मथ तेल रो पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गुप्ता कहो कि घरेलू ग्राहकां सारू रसोई गैस री पूर्ति सामान्य है। वे जनताओं अफवाहां माथ ध्यान नी देवन री अरज कीनी। इन बीच पहली वाला केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज झुंझुनू जिला माए जनताओं ईंधन बचावन री अपील कीनी।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रिपोर्टें होती है और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हमें तेल बचाना है तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्रीय हित में, तो आपने देखा प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े काफिले में कम किया है। हमारा भी बहुत बड़ा काफिला हो सकता था लेकिन मैंने भी काफिले में मना किया, हमारी ज्यादा गाड़ियां साथ नहीं रहे थे, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राष्ट्रीय हित में है और ये सारी चीजें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने और राज्य सरकार ने उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया और आगे भी निश्चित रूप से इसका अच्छा देखने को।
0: इन बीच सवाई माधोपुर जिला में पेट्रोल पंप मथ कम तेल देवन री शिकायत पाछे नापतौल विभाग रा जांच दल जिला रा 11 पेट्रोल पंप री जांच कर जरूरी कार्रवाई कीनी। आ पेट्रोल पंप मथ कम तेल देवनु मिलिया पाछे संबंधित पंप रा नोजल सीज कर दिया चिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत एकजुट राष्ट्रीय कार्रवाई रा तौर फौजी सटीकता सूचना नियंत्रण कूटनीतिक संकेत और माली संकल्प न एक सागे पेश करी चिया। सेना प्रमुख नई दिल्ली में सुरक्षा से समृद्धि की ओर सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर मुद्दा मथे राखी जा सेमिनार में बोल रहा है। वे कहो कि ऑपरेशन सिंदूर रा तहत गहराई ताई वार करता थका आतंकी ढांचा ने नेस्तनाबूद करिया पाछे सोच समझ हर एक मकसद रा तहत रोकी चियो। जनरल द्विवेदी कहो कि शांति तय करण विकास री रफ्तार तेज करण और दुनिया माए माहौल ने आपरा पक्ष माए करण सारू देश री ताकत रो इस्तेमाल रणनीतिक सूझबूझ सागे करनु चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता री आवन जावन री ठोणाऊ लावारिस कुत्ता ने हटावन रा लारला हुकम माए किणी भांत री राहत देवन नटक्यो है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ री सदारत वाली पीठ अदालत रा ई बारा माए नवंबर 2025 माए दिया जा हुकम माए बदलाव री मांग करन वाली अर्जियां आज खारिज कर दीनी। अदालत एड़ा कुत्ता ने आश्रय स्थला माए राखण रा हुकम दीना। अस्पतालां स्कूलां और दूजी ठोणा कुत्ता कानियों हमला करण रा वाकया रो हवालो देता था का पीठ कहो के हुकम री पालना नी करण वाला अहलकारा ने अदालत री अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई रो सामो करनु पड़ सके है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने बेहतर और पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलावन रो प्रस्ताव है। इसारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग राखी जी चिणमाए ई परिवहन सेवावां और बसा री खरीदी रा काम री प्रगति रे बारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए बताई जियो के अगस्त महीना ताई राजस्थान रोडवेज ने 144 ब्लू लाइन बसा और 30 एसी स्लीपर बसा मुहैया करावन री ई जानकारी दीरी जी। बसा चलावन सारू प्रदेश माए 9 नुआ ई बस डिपो ई बनाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे माए

0: जोधपुर मंडल रा रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन रो दौरा कर अर्व्यवस्था में री जानकारी लीनी व स्टेशन परिसर में साफ सफाई री व्यवस्था पीवण रा पानी प्रतीक्षालय और गाड़िया उभीकरण रिठौर समेत मुसाफिरा ने मुहैया कराया जावण वाला न्यारा न्यारा सुविधा रो बारीक जायजो लीनो। डीआरएम पाली मारवाड़ हूं जोधपुर बीच विंडो ट्रेलिंग री जांच कर न्यारा न्यारा टेसना माथा हिफाजत तू जुड़िया कामा रोई जायजो लीनो। कोटारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जनावरा री हिफाजत और निगरानी तंत्र ने मजबूत बनावण सारू अब सूरज री रोशनी मड़ी बिजली चालन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। इणु घना जंगला में पानी रा कुदरती और इंसान कानियों बनाई ज्या स्रोता माथे 24 घंटा बिना रुकावट नजर राखी जा सकेला। अहलकारा ने मुजब आ नुआ कैमराओं वन विभाग रा फील्ड स्टाफ ने जनावरा रा व्यवहार नु जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी हासिल करण और हमारा इलाका री निगरानी माई मदद मिलेला। प्रदेश री महिलावां ने गर्भाशय रा कैंसर री बीमारियों बचावण सारू चलाया जा रहा टीका लगावण रा अभियान रा तहत कोटपुतली बहरोड जिला रा मेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे हाल ताई 65 टाबरिया रे टीका लगा दिया गया है। अहलकारा ने मुजब गांवाई हलका माए स्वास्थ्य विभाग रे टीमा लगातार काम कर रही है। इनु 32 तादाद माए टाबरिया रे टीका लगाया जा रहा है। जयपुर जिला माए हर महीनारी 5 और 20 तारीख ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरा रा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियां री ओर सवारे 8 से 9 बजे ताई ग्राम पंचायतां और सरकारी स्कूलां माए खास शिविर लगाया जावेला। आम आए जनता ने योग प्राणायाम और कसरत रो अभ्यास करायो जावेला। इसा गई एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं री मदद मौसमी बीमारियां बचाव सही खान पान और साफ सफाई रा बारा माए जानकारी दी जावेला। अरब मौसम प्रदेश माए पाकिस्तान नु लागते सरहद कने रा हलका शेखावाटी हलका और कोटा संभाग माए जबरदस्त लू बाज रही है। आ हलका माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों है। मौसम विभाग रे मुजब 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान सागे चित्तौड़गढ़ सब 19 ठौड़ रहे हो। इनके अलावा श्रीगंगानगर माए 45.9 अलवर माए 45.8 और पिलानी माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। राजधानी जयपुर माए आज पारो 43.2 डिग्री सेल्सियस ताई पूग कियो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता एक सप्ताह माए राज्य रा आतुणी हल्का माए सरहद कने तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस बीच रहवण रा आसार है। वे बतायो कि आवता 3-4 दिन ताई प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी चालन री संभावना है।
1: आगामी एक सप्ताह के दौरान अभी भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच जारी रहेगा। यानी वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दक्षिण पूर्वी भागों में यानी कोटा संभाग और भरतपुर में भी देखेंगे तो कहीं कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तेज धूल भरी हवाओं का भी प्रभाव राज्य के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है।
0: तेज गर्मी और लू ने ध्यान रखता थका प्रदेश का सगला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र माए खास इंतजाम करी चिया है। अस्पताल माए मरीजा सारू बिस्तर रखण सा गई ORS कॉर्नर ही बनाई चिया है। इसा गई जनता ने गर्मियों बचाव रे बारा माए जानकारी दी जा रही है। न्यारी न्यारी थोड़ा सड़का माथे पानी रो छिड़काव करावण सागे लोगों दोपहरा री बगत जरूरी वेवन री सूरत माई बाहर जावण री अरज करी जा रही है। आईपीएल क्रिकेट होड़ रा तेत आज जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माई राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स बीच मुकाबलो फैला। वो मैच अमू थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। अंक तालिका माए फिलहाल 5वा नंबर री टीम राजस्थान रॉयल्स ने प्ले ऑफ दौर माए पुगण सारू ओ मैच जीतनो जरूरी है जदके लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका माए आखिरी छोड़ माथे है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी कहो राज्य

0: री साफ नीतियाँ राजस्थान क्रिटिकल मिनरल्स रा खास केंद्र रा तौर ऊँसा में आ रो है। सुप्रीम कोर्ट टीका लगायोड़ा या नसबंदी करोड़ा लावारिस कुत्ता ने आश्रय सलामाए राखन रा पहली रा हुक्म ने पाछो लेवन नट्यो। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने पर्यावरण अनुकूल बनावन सारू ई साल अगस्त महीना ताई 500 ई बसा चलाई जावेला। राज्य रा खणखर हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू रो असर। इंसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, आप किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

घणी जोर की झक्कर चाल, बड़बा लागी रात, रेड़ियार मोबाइल पता सुन लियो मारी बात। घणी जोर की झक्कर चाल, बड़बा लागी रात, रेड़ियार मोबाइल पता सुन लियो मारी बात। सुन लियो मारी बात, बताओ था का भी तो हाल, श्याम पड़िया की सात बाजगी अब सुन लियो चौपाल। श्याम पड़िया की सात बाजगी अब सुन लियो चौपाल। अब सुन लियो चौपाल, जानकारियां भरपूर मिलेगी, और संधी बातां घणी काम की, थाका मन की कली खिलेगी, और मीठा मीठा गीता पब नाचेगा गोपाल। श्याम पड़िया की सात बाजगी अब सुन लियो चौपाल। श्याम पड़िया की सात बाजगी अब सुन लियो चौपाल। तो भाई बनाओ चौपाल को टर्म हो गयो, और यो चौपाल सुनबा को जो आपनो कार्यक्रम छे श्याम पड़िया को रोजीना कोई छे, और रोजीना बढ़िया बढ़िया जानकारी और मनोरंजन अपने ही में चौपाल कार्यक्रम का माध्यम से करा जा। तो सबसे मूल बात तो यह भाई बनाओ कि गजब की गर्मी पड़ रही है, और ये कड़कड़ती गर्मी में चारों मेर ला बरस रही है। और जब ला बरस रही है तो अपनी तबीयत में जग रखाण की जिम्मेदारी अपनी भाई बनाओ, क्योंकि थोड़ी सी भी ढील दे दी ना तो वह खजन के सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये वास्ता अपन ढील न देनी। ये गर्मी का मौसम अपना स्वास्थ्य को विशेष ध्यान अपनी तो रखाणगा, कोई दूसरा की जिम्मेदारी थोड़ी छे। ये लेख जितनी भी सावधानी छे, जितना भी ये गर्मी से बचबा का उपाय छे, लूजक कर से बचबा का उपाय छे, आप नहीं करनी पड़ेगा। तो कुल मिलार भाई बनाओ, जद भी अपन घर के बारे खड़ा तो थोड़ा बहुत खा पीर खड़ा, और भरपूर मात्रा में पानी पिया, ठंडा जो भी पीबा का उप ये छे, जैसे शरबत छे, छाछ छे, राबड़ी छे, दूध छे, ये जो ठंडा जो दही छे, यहाँ को अपन सेवन करा। और ठंडी बासी रोटी तो कदी भी न खावा भाई बनाओ, क्योंकि ठंडी बासी रोटी सुन ना अपना तबीयत खराब हो सके। ये लेख ई को तो परहेज करनी पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जद भी घर सुखड़ा तो गला में श्यापी गमचू लटका लिया, और लटकावाई को ना उन्हें माता कर नाका के काना के बांध लिया, मुंडा के बांध लिया, जदी तो जकर रुकेगी। और पहली बात तो बड़े अंबर दपरी में खड़ाई को न, हाँ दन में अतनो तापमान रह जाए भाई बनाओ, का सीधो अपना शरीर पर प्रभाव छोड़ज। ये लेखा अपना ये चीजा जरूरी छे। और कान गाई आप तो जानो छो, कई गर्मी में जो मौसमी बीमारियां, उल्टी, दस्त, डायरियो, जकर, कोई लू की चपेट में आ जाओ छे, कोई के ज्यादा तापघात हो जाओ छे, तो ऐसी स्थिति में अपन ने कहीं न करनो, केवल सीधो डॉक्टर के पास जानो छो, और डॉक्टर साहब के पास जार इलाज लेनो छे। लापरवाही कतई न करनी भाई बनाओ। और भाई बनाओ, यह तो बात इलाज की छे, लेकिन इलाज की लारा लारा चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, अपनी सरकार जनता की भलाई के लेकर टर्म टर्म पर नाली नाली योजना लाओ छो, नाला नाला कार्यक्रम चलाओ छो, और जनता की भलाई के लिए इतनी सारी योजना चला मिली छे भाई बनाओ, केवल मात्र अपन जागरूक हो, वहां की वहां को फायदो लेनो छे, और अपना बन बाया कारण भी जागरूक करनो छे। ऐसी एक योजना छे भाई बनाओ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यह योजना

0: जो आपण मछली पालन करा चा ना, मछलियां पाला चा, चाहे वह आपण समंदर के किनारे रवाला किसान हो या मछुआरा हो या आपण अटी काडी आड़ो ती में भी गहरी ठाम पर मछली पालन केंद्र खुले हुए आज। तो ये योजना का माध्यम से नया नया तालाब खुदाया जाओ छ और वो जो मछली का जो बीज आओ छ वहाँ गुले का आओ छ वहाँ ने उपलब्ध कराओ छ किसाना का लेख वहाँ का लेख दाना की व्यवस्था करे छ वहाँ का पोषाहार की व्यवस्था करे छ और कान का बीमारी आ जाओ तो वहाँ का जो चिकित्सा विभाग वशाण की दवाएं भी वहाँ का उपलब्ध कराओ छ किसाना कान जो मछली पाल बाड़ा किसान जो मछली पालक छ कुल मिलाकर वहाँ की सहायता करे छ और ऋण भी उपलब्ध कराओ छ सरकार। ई लेख यह योजना बहुत बढ़िया काम की छे और ई योजना का माध्यम से जो ये ई काम से जुड़िया हुआ किसान छे वहाँ की इनकम बढ़ावा की भी जिम्मेदारी किसान ने ले रखी आपने सरकार ने ले रखी छे और ई क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो यो ई योजना को मूल मकसद छे भाई बनाओ। ई लेकर जितनी भी आपनी जो योजना छे सरकार की आपन जागरूक और फायदो लेनी छे आज। और भाई बनाओ नया नया तरीका भी आपन जो जो वैज्ञानिक छे अपना जो डॉक्टर छे विशेषज्ञ छे यहाँ का माध्यम से जब अपन नई तकनीक से काम करना चाहे नई तकनीक से मछली पालन का क्षेत्र में देख लो अगर नई तकनीक से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा भाई बनाओ। ई लेख आपना चन जागरूक हो और आपने सरकार की योजना से जितनी भी वहाँ को फायदा लेनी चाहिए और यो या तो बात केवल मात्र अपनी चर्चा के दौरान जो अपने फायदा की बात करा चा अपनी सरकारी योजना की बात करा चा अपने काम की बात करा चा तो या ना अपन या कोई ना कि भाई अटी सुनर अटी खाड़ दी हाँ अपन न काम लेनी छे ये योजना यदि तो अपना फायदा होगो। और यहाँ योजना के लेकर काम मन लेवा के लेकर कोई अपन कान का कोई डिग्री करवा की जरूरत को ना कोई पढ़ाई करवा की जरूरत को ना सीधा ई मित्र पर जाओ और जानकारी लियो और फार्म भरो और जुड़ जाओ तो भाई बनाओ अपन अपना दूसरा बन भाया कान भी जागरूक करना छे। और भाई बनाओ बन तो जागरूक करवा गया टर्म छे के शाम को टर्म आ गयो और शाम का टर्म डॉक्टर साहब भी आ गया तो आओ सुन लिया अपन या एक और यहाँ की बातचीत जो छे अपन पशुओं में कहीं टीकाकरण भी टर्म की हो छे तो आओ सुना यार बातचीत। भाई बनाओ जैसा कि आपने तोल छे का आपनी चौपाल में रोजिना ही नई नई जानकारी मिले छे तो आज आपनी चौपाल में पावना छे डॉक्टर मनोज भारती वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग मोखापाड़ा कोटा और आज आपन यहाँ से बातचीत करेंगे पशुओं में टीकाकरण का विषय में तो सबसे पहले तो अपना पावना को कराचा स्वागत डॉक्टर साहब माकी चौपाल में आपको घणो घणो स्वागत छे। राम राम साहब।
1: राम राम आपको भी और सभी पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।
0: डॉक्टर साहब अबाणु गर्मी को टर्म छे और ये गर्मी में आपना जो डांडोर छे जानवर छे वहाँ का विशेष रख रखाव की जरूरत छे हारी बीमारी ने बचावा के लेके जो आप टीकाकरण कराऊ चा ईको कहीं महत्व छे।
1: आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। टीकाकरण हम इसलिए कराते हैं चाहे हमारे पशु हो चाहे हमारे बच्चे हो कि बीमारी से बचाव हो सके क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं वायरस जनित हैं बैक्टीरिया जनित हैं जिनका या तो बीमारी होने के बाद उपचार संभव नहीं है और अगर वो बीमारी हो जाती है तो वो संक्रामक प्रकृति की होती है और एक से दूसरे पशुओं में बहुत तेजी से फैलती है
0: जी।
1: और कुछ तो इस तरह की बीमारी होती है कि उसमें उपचार ही संभव नहीं है पशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है
0: जी।
1: तो ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए ही टीकाकरण अभियान चलाया जाता है।
0: तो यो टीकाकरण अभियान चलाए जाओ तो टीका कशा कशा जानवर में लगावो जरूरी है।
1: अगर हम अपने ज्यादातर जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो गाय और भैंस रखते हैं दुधारू पशु रखते हैं बछड़ा बछड़ी रखते हैं पाड़ा पाड़ी लगते हैं तो हम वर्तमान में तीन तरह के टीके उनको लगवा रहे हैं। पहला मुंह खुर का टीका होता है खुरपका मुंह पका का जो कि साल में दो बार अभियान चलता है
0: जी।
1: अभी भी अभियान चल रहा है जिन पशुपालक भाइयों ने अभी भी अपने पशुओं को मुंह पका खुरपका बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं वो आज ही निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु उप केंद्र पर संपर्क करें वो आपके घर पर आकर निःशुल्क टीका लगा के जाएंगे पशुओं को
0: जी।
1: साथ में भारत सरकार ने इस बार ये भी प्रबंध किया है कि टीकाकरण बिल्कुल सुनिश्चित हो किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो उसके लिए भारत सरकार ने OTP भी अनिवार्य कर दिया है
0: जी।
1: तो पशुपालक के घर हमारे विभाग के कर्मचारी आएंगे और वो आपसे OTP मांगेंगे तो आप उनको सहयोग करें मोबाइल का OTP दें और अपने पशु का अगर अभी भी टीकाकरण नहीं लगवाया है तो टीकाकरण लगाना सुनिश्चित।

0: सुनिश्चित करें, क्योंकि अभियान में अब कम ही समय शेष बचा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो टीकाकरण की बात करी छे और ओटीपी की बात करी छे, तो इसके लिए काई रजिस्ट्रेशन की जरूरत छे?
0: कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आपका मोबाइल नंबर वो अपने आप आएगा, आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा
1: जी,
0: अपने मोबाइल में दर्ज करेगा। कई बार ये होता है कि सिस्टम की वजह से, नेटवर्क की समस्या की वजह से ओटीपी नहीं आ पाता, लेकिन आप फिर भी टीका लगवा लें
1: जी,
0: उस स्थिति में कर्मचारी आपका, पशु का और खुद कर्मचारी तीनों मिलके एक साथ फोटो खींचेंगे, वो अपलोड कर देंगे
1: जी।
0: या अगर बाद में भी वो ओटीपी मांगे तो आप बाद में उसको सहयोग करें, लेकिन सबसे पहला काम कि टीका लगना चाहिए।
1: तो अबानु घर घर टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है, मतलब
0: घर घर जाके निःशुल्क टीकाकरण का सरकार का अभियान है ये।
1: अच्छा, तो इसमें कसी कसी उम्र का जो आयु वर्ग छे पशु छे, भाई छोटा बछड़ा बछड़ा का भी लागे छे या बड़ा का लागे छे, कशा कशा जानवर का लागे छे?
0: 4 महीने से ऊपर के सारे जानवर इसमें आते हैं, गाय भैंस दुधारू पशु, और सबको टीका लगवाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये बीमारी ऐसी है मुंह खुर की कि अगर एक बार आ गई तो पशु जिंदगी भर के लिए दूध से कम हो जाता है, उसको ब्याने में समस्या आती है, और जीवन भर उस वायरस का वो स्थायी रूप से घर बन जाता है पशु, और आगे के लिए खतरा हो जाता है कि दूसरे को कभी भी वो संक्रमित कर सकता है
1: जी, जी।
0: तो भारत सरकार ने जैसे पोलियो अभियान बिल्कुल खत्म कर दिया जड़ से, उसी तरह भारत सरकार संकल्पित है, राजस्थान सरकार हमारी संकल्पित है कि हम मुंह खुर की बीमारी को भी इसको जड़ से समाप्त कर देंगे
1: जी।
0: तो आप सब पशुपालक भाइयों से मेरी अपील है कि आप अपने पशुओं को निश्चित रूप से मुंह खुर का टीका अवश्य लगवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये मुंह पकार जो रोग छे, ये रोग के अलावा भी दूसरी बीमारी का भी टीका लागे छे, काई कसी कसी बीमारी का टीका लागे छे?
0: अब जैसे जुलाई में मानसून बारिश शुरू हो जाती है अपनी, जून जुलाई में, तो उसके लिए एक गलघोंटू की बीमारी होती है, जो पशु रखते हैं उनको पता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है। इसमें पशु के गले में सूजन आ जाती है
1: जी,
0: 106 से 107 डिग्री तक बुखार पहुंच जाता है, एक से दूसरे पशु में बीमारी बहुत तेजी से फैलती है, और गले से घर घर की आवाज आती है, तो इसीलिए इसको गलघोंटू कहा जाता है
1: जी।
0: इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत अधिक रहती है, अगर समय पे 2 या 3 दिन में इलाज नहीं मिले, तो इसके बचाव के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। तो इस अभियान के खत्म होने के बाद गलघोंटू का भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, ये अभियान भी घर जाके पशु के निःशुल्क लगवाया जाएगा। तो आप जरूर गलघोंटू का टीका भी मानसून शुरू होने से पहले अर्थात जून के आखिर तक ये टीका आप लगवा लेवे
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर मान लो किसान कान का एक कारण वश माँ का पशुपालक भाई छे वो अभियान में चूक गया, तो फिर उको का ही विकल्प छे?
0: उसका विकल्प यही है कि जैसे मुंह खुर का तो 6 महीने बाद दोबारा अभियान होता है।
1: अच्छा अच्छा, साल में दो बार
0: होता है, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि ये 2 माह अभियान चलता है, आपके पास पूर्ण समय रहता है, हमारा विभाग का कर्मचारी निश्चित रूप से सहयोग करता है। आप अपने समय बता दो कि साहब मैं इस समय उपलब्ध रहूंगा, हमारा पशु चिकित्सा कर्मी वहीं आकर आपके टीका लगा।
1: तो साल में कैसा महीना में अभियान चला चाहिए?
0: साल में ये सामान्य तौर पे मार्च से मई तक अभियान चलता है
1: जी,
0: और सर्दी में ये दोबारा अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक अभियान चलता है।
1: कहीं सावधानी रखनी पड़े चाहिए टीका?
0: नहीं, इसमें कोई ऐसी विशेष सावधानी की जरूरत नहीं है। टीकाकरण के लिए बस यही है कि पशु बीमार नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: बीमार पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर आपका पशु बीमार है तो उसको उस टाइम टीका मत लगवाओ, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद आप टीका लगवा लो। दूसरा, अगर उसके ब्याने में 1-2 महीने हैं, ब्याने में आखिरी समय है ब्याने का, तो भी हम लोग उस सलाह यही देते हैं कि आप टीकाकरण ना लगवाएं
1: जी जी।
0: तो इन 2 बातों का ध्यान रखें, अन्यथा टीका पूर्ण सुरक्षित है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम हमारे बच्चों को टीका लगाने के बाद बुखार आ जाता है, वैसे ही पशु को क्या होता है कि कभी कभी टीका लगने के बाद बुखार आ जाता है
1: जी।
0: वो दूध कम कर देता है। कहीं पशुपालक हमारे भाई इसी भ्रांति में रहते हैं कि इसको टीका लगाने से दूध कम हो जाएगा
1: जी,
0: जबकि ये टीका लगना बहुत जरूरी है। 1 या 2 दिन का नुकसान तो हम दूध का एक बार सह लें, लेकिन अगर ये बीमारी आ गई तो वो जीवन भर के लिए दूध से कम हो जाएगा, और इसके संपर्क में जो भी पशु आएंगे उनका भी दूध जीवन भर कम रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो आप लोग इस चीज की चिंता न करें, अगर आपको लगता है तो वो विभाग में भी उपलब्ध है, बाजार से भी जो पैरासिटामोल की गोली है बाजार में, इंसानों की भी है या जानवर की भी आती है, 1-1 गोली सुबह शाम दे दो, वो बुखार भी 2 दिन में उतर जाएगा
1: जी।
0: तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पशुपालक भाइयों को।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: लगवाना है।
1: तो ये गाय और भैंस के अलावा भी जो दूसरा पशुपालक है, बकरियां भी पाल छे, भेड़ भी पाल छे, और कई जगह पर आपने राजस्थान में दूसरा जो पशु पाला जाओ जाए ऊँट ऊँट वगैरह या घोड़ा घोड़ी छे, वो वहाँ का भी काम का टीकाकरण की जो सुविधा छे वो छे सरकार का?
0: हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से सभी पशुओं के टीकाकरण की सुरक्षा

0: आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि अपने यहाँ कोटा में बकरी और भेड़ पालन भी बहुत संख्या में है। बकरियां और भेड़ के लिए ईटी फड़किया नाम की एक बीमारी होती है।
1: अच्छा,
0: क्या होता है कि जब खेत खुल जाता है, जब खेत साफ हो जाता है, गेहूं की कटाई हो जाती है, तो खुले खेत में पशु छोड़ दिए जाते हैं, भेड़ बकरियां
1: जी।
0: तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रिडियम नाम का, वो अंदर पेट में जहर बना देता है
1: जी।
0: तो बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों की इससे मृत्यु होती है।
1: बिल्कुल,
0: उसके लिए ईटी टीका, फड़किया रोग का टीका हर पशु चिकित्सा संस्था में उपलब्ध है
1: जी।
0: और साल में एक बार ये टीका जरूर लगाया जाना चाहिए भेड़ और बकरी को फड़किया रोग से बचाव के लिए
1: जी।
0: तो ये भी बहुत जरूरी है। ये टीका हमारे पास अभी कोटा में आ चुका है, हम लोग इसको वितरित कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही हो, आप संपर्क करें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र में, और आप फड़किया रोग का, जिनके भेड़ बकरी जिन पशुपालकों के, फड़किया रोग का टीका जरूर लगवा लें।
1: तो हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध छे?
0: हर गांव में जो भी निकटतम पशु स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ये सुविधा उपलब्ध है।
1: अच्छा, एक लेकर कान का पीसा देवा की जरूरत
0: नहीं है? बिल्कुल निःशुल्क है।
1: अच्छा,
0: इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना। पशुपालक के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और निःशुल्क टीकाकरण उनके डोर स्टेप पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।
1: मतलब कहीं भी समस्या हो, सीधा आप पशु चिकित्सालय में जाओ और अपना पशु को इलाज कराओ या टीकाकरण कराओ। या बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। और कहीं कहीं ये गर्मी का मौसम पशुओं का स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखना क्या हो सकता है?
0: देखो, इस टाइम गर्मी में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है
1: जी।
0: तो पहला तो हमें ध्यान रखना है कि पशुओं को लू से बचाव रखनी है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि गर्मी में लू लगने की संभावना बहुत रहती है। गायें भैंसों के हमारी तरह पसीना नहीं आता
1: जी।
0: तो वो अपनी गर्मी केवल जीभ के माध्यम से निकालती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हांफती हैं
1: जी।
0: जो विशेष तौर से जो बाहर की ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है, इसी तरह भैंस को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उसके काला रंग होने के कारण। तो आप ये सुनिश्चित करें कि नियमित निश्चित रूप से पशु को दिन में कम से कम 3 बार उसको ठंडा पानी पिलाएं, लू से बचाने के लिए। ठंडा पानी उसके पेट में रहेगा तो उसको गर्मी कम लगेगी, कम हांफेगा
1: जी।
0: दूसरा, पशु को कभी भी सीधी धूप में ना रखें, छोटे पाड़ा पाड़ी को ना रखें, केलड़ा केलड़ी को ना रखें, उसको छायादार कवर्ड एरिया में, अगर आपका शेड है तो शेड में पंखा लगवा दें, ऊपर घास की छप्पर बिछा के पानी छिड़काव कर दें, और अगर आप खुले में रखने में मजबूरी है तो किसी पेड़ के नीचे बांध के रखें। इस समय सबसे ज्यादा लू से मरने की पशु की संभावना बहुत ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा, पशु के आहार में भी परिवर्तन करें। जैसे मैंने बोला है, पानी की उपलब्धता रहे, थोड़ा पानी में नमक भी ज्यादा मिला दें, उससे पशु को प्यास लगेगी और पानी पिएगा। पशु को सुबह और शाम ज्यादा चारा दें, दिन में चारा ना दें। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उसके पेट में भी गर्मी रहती है, तो सुबह शाम आप पशु को चारा दें। चारे में ऊर्जा ज्यादा मात्रा हो
1: जी,
0: क्योंकि चारा पशु कम कर देता है गर्मी की वजह से। कम करने की वजह से उसका दूध भी डाउन हो जाता है, 25-30% डाउन हो जाता है। तो आप दलिया ज्यादा डालें, या आप चाहें तो उसके दलिये में 100 ग्राम रोजाना तेल डालें
1: जी।
0: इसमें भी पशुपालक भाइयों में भ्रांति रहती है कि तेल गर्मी करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेल गर्मी नहीं करता, तेल उल्टा ऊर्जा को बढ़ावा देता है
1: जी।
0: तेल में 2.25 गुना ज्यादा ऊर्जा रहती है। तो आप कम से कम अगर 100 ग्राम पशु को उसके बाटे में रोजाना तेल देंगे तो उसकी ताकत बनी रहेगी और दूध भी उसका ज्यादा नहीं टूटेगा, बहुत कम टूटेगा। तीसरी चीज, मीठा सोडा आप उसको जरूर दें
1: जी।
0: कम से कम 25 से 50 ग्राम मीठा सोडा दें, ये ठंडक रखता है। दूसरा, जो हांफने से उसकी लार से जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो जो तत्व है हमारे, मिनरल तत्व, उनका नुकसान होता है, तो उसकी जानवर में कमी आ जाती है
1: जी।
0: तो मीठा सोडा उस कमी को पूरा करता रहेगा। मीठा सोडा और नमक अवश्य दें गर्मी के समय में, साथ के साथ आप उसको खूब पानी पिलाएं। हो सके तो छाछ भी आप दे सकते हो, हर पशुपालक के पास गर्मी में छाछ रहती है, तो छाछ भी उसके लिए, पशु के लिए बहुत अच्छा काम करेगी।
1: मतलब आपानो बाटा में अगर आपने 100 ग्राम तेल डाला तो फायदो करे छे,
0: बहुत फायदा करे।
1: तो तेल खाए को डाल सका जमा,
0: तेल आप कोई सा भी दे सकते हो खाने का।
1: अच्छा,
0: अलसी का, तिल्ली का, सोयाबीन का भी दे सकते हो, लेकिन ज्ञापन पशु को नहीं देना चाहिए। बाकी आप किसी भी प्रकार का, सरसों का, कोई भी खाने का तेल दे सकते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दीजिए। अब चालता चालता मां का किसान भाई बने कारण कई संदेश का रूप में खबर छाऊ।
0: मेरा यही संदेश है कि अगर पशु खुश है तो पशुपालक खुश है, पशुपालक खुश है तो हमारा देश खुश है
1: जी।
0: क्योंकि दूध और दही और इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल।
0: तो पशु हमारे परिवार के, पशुपालक के परिवार के सदस्य की तरह होता है। तो हम अगर केवल छोटी छोटी बातों की सावधानी रखें, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, समय पर उसका टीकाकरण करवा दें, उसके थोड़ा खुराक को हम सही कर दें तो पशु बीमार नहीं होते।
1: जी जी जी।
0: तो पशु स्वस्थ रहेगा, दूध

0: भी अच्छा आएगा, आर्थिक समृद्धि भी होगी पशुपालक की और पूरे देश की आर्थिक समृद्धि होगी। मेरी पशुपालक भाइयों से यही अपील और विनती है कि आप जरूर टीका लगवाएं और जैसे जैसे पशुपालन विभाग आपको गाइड करता है आप उसी प्रकार पशुपालन को आगे बढ़ाएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात है। वहाँ का कोई पशुपालक भाई कहीं भी समस्या न ले रहा आपसे संपर्क कर पहुंचाओ तो आपका मोबाइल नंबर माँ का पशुपालक वर्ण भाई कारण जरूर बताओ।
0: जरूर, मेरा मोबाइल नंबर है आप लिख लो 9799434

जगन्नाथ गोचर की मीठी आवाज में यो लोक भजन आपने सुनियो। और भाई बनाओ, आपने सरकार ने जो 2026 और 27 के लेकर खरीफ फसलों का जो न्यूनतम मूल्य छे सरकार काटी का वो घोषित कर दिया, और ई के तहत जो धान की फसल छे हुमन जो सामान्य धान छे साधारण धान छे उको न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपया प्रति क्विंटल, और ग्रेड ए को मतलब नंबर एक धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य छे 2461 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार को भाव जो हाईब्रिड ज्वार के लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4023 रुपया, और मालदंडी के लेकर 4073 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित करो छे। बाजरा को भाव जो छे न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपया, रागी 5205 रुपया, मक्का 2410 रुपया प्रति क्विंटल। ऐसे ही तुअर जो अरड़ छे उको न्यूनतम समर्थन मूल्य 8450 रुपया, मूंग 8780 रुपया, उड़द 8200 रुपया, मूंगफली छे 7517 रुपया।

प्रति क्विंटल इको न्यूनतम समर्थन मूल्य छे। और भाई बनाओ सूरजमुखी का जो बीज आउ छे वहां को न्यूनतम समर्थन मूल्य छे 8,343 रुपया। पीली सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,708 रुपया निर्धारित करियो छे। और तल्ली को जो छे न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,346 रुपया। और जो राम तेल आउ छे नाइजर सीड उको न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,052 रुपया निर्धारित करियो गयो छे। असे कपास जो मध्यम रेशा की कपास छे उको न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,267 रुपया। और लंबा रेशा के लेकर 8,667 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करियो छे। तो भाई बनाओ यह जानकारी भी आपन रखान वो बहुत आवश्यक छे। और भाई बनाओ आप तो जानो छो कि आपनी जो छे सरकार जितनी भी योजना चलाओ छे वो सब आपने लेकर चलाओ छे भाई बनो। तो आपन एक ही बात खबो छे मां को तो ही आकाशवाणी का चंबल चैनल का माध्यम से चौपाल कार्यक्रम का माध्यम से कि जितनी भी योजना छे सबको आपन फायदो लेनी चाहिए। आपने याद छे के फाचल दना कई बरसा पहली जब सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई थी तो आपन सबने उमा खूब बढ़ चढ़ हिस्सो लियो छो भाई बनाओ। कहीं ऊँचे का जब समय खड़तो जाओ छे तो लोकबाग योजना भूलता जाओ छे। अन्यू लागे छे लोकबागा ने कि भाई वही योजना बंद होगी। योजना कदी भी बंद न हो, सरकार योजना चलाओ छे तो उन्हें बंद न कर, केवल जानकारी रखने की जरूरत छे। ऐसी योजना छे प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऊ दौरान कहीं घना लोगों को माता बहनिया को किसान बहन भाइयों को जीरो बैलेंस में खाता खोलिया छा। और जीरो बैलेंस में खाता खुलवा को मतलब एक नयो काम छो, बढ़िया काम छो। तो गरीब लोग जो छे जहाँ कारण बैंक से कोई लेनो देनो कोई नहीं, जो बैंक ताई ठेठ ताई फुगचा को ना, जो वंचित वर्ग छे वहाँ कारण एक तरह से वित्तीय मिशन से जोड़बा के दूसरो नाम छे प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना का माध्यम से घना लोगों का खाता खुले और वहाँ कारण फायदो मिलियो। ये योजना को सबसे बड़ो जो मूल फायदो छे वो यो छे भाई बनाओ कि यो जो जीरो बैलेंस को जो खातों खुले छे इमें आपने कोई न्यूनतम राशि रखाण भागी जरूरत को न कही या कोई न कि भाई बैंक में जाऊंगा तो आपने 2,000 जमा करा भाग लेके पैसा चाहिए या 3,000 जमा करा भाग लेके पैसा चाहिए। ऐसी बात को न बना राशि कही जीरो बैलेंस में खातों खोल सका छा, अपने खुला सका छा भाई बनाओ। दूसरी बात ये जीरो बैलेंस का खाता में भी उसे ही ब्याज मिले छे जैसा दूसरा खाता में मिले छे। ये लेकर अपन यह न सोचा कि भाई माँ को तो जीरो बैलेंस को खाता हो चाहिए, मैं जीरो बैलेंस का खाता में पैसा जमा करांगा तो आपन न कहीं ब्याज में लगो। नहीं भाई बहनों, ब्याज जरूर में लगो, जितनी भी आपकी रकम छे नियम के तहत आप कारण ब्याज में लगो भाई बहनों। ई खाता में जो खाता धारक छे वो कारण एक रुपये नाम से डेबिट कार्ड दियो जाओ छे। और वो रुपये डेबिट कार्ड से सरकार फ्री में 2,00,000 को दुर्घटना बीमो मुफ्त करे छे, जिसो आपने जो भण भाई छे गरीब लोग छे वहाँ कारण ई को फायदो मिल जाओ छे भाई बनो। तो आपने ये जो जानकारियाँ छे वहाँ ने बड़ा मनन का साथ सुनर आपने काम में लेनी चाहिए। और जानकारी तो आप जानो छे, जानकारियाँ के लेकर तो चौपाल भंडार छे, जानकारी ले बाड़ो होनी चाहिए। और ऐसी एक जानकारी खाल का कार्यक्रम का विषय में छे। तो भाई बनो खाल छे 20 मई 2026 और वही टाइम आपने चौपाल को 7 बजे से 7:30 बजे तई। और खास कार्यक्रम छे फोन इन कार्यक्रम। और कृषि विभाग में जो कृषक जो किसान छे वहाँ कहीं कहीं सुविधा मिले छे। और विशेषज्ञ यह जानकारी देगा आपने डॉक्टर श्री अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग कोटा। और माँ का वही जाने पछाने फोन नंबर STD कोड 07442941142। तो आप प्रसारण समय 7 बजे से 7:30 बजे तय आपका मन में जो भी प्रश्न हो भाई कृषि विभाग का डिशू किसान कारण कहीं कहीं सुविधा मिले छे ये विषय में आप फोन कर अपना मन का प्रश्न पूछ सको छो। और भाई बनाओ आज तो आपने चौपाल को टाइम पूरा रहो छे, घड़ी भी इशारा कर रही छे। तो क्यों ना आपका रेडियो साथी प्रेम भाई के तई दिवा गया चाला छा राम राम।

एक विशेष सूचना। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में कल यानी 20 मई को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम

का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं और सर्जरी से निदान। जो भी श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष अग्रवाल से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, कल यानी 20 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर है 07442941142। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 07442941142।

एक विशेष सूचना। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक बुधवार की तरह कल भी 20 मई को शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा कृषि विभाग से कृषकों को सुविधाएं। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 07-44-294-1142। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 07-44-294-1142। प्रसारण समय बुधवार शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा।

राजस्थानी लोक संगीत में जिन आवाजों को भी आपने सुना उनके नाम हैं रेखा राव, डीसी मदाना, अभिषेक, श्वेता रघुवंशी, प्रिया गुप्ता, केडी, दीपिका खांडेल, कोमल चौधरी, सोनू चरण भट्ट, रेपरिया बालम, अक्षत जाकर, हिम्मत वर्मा, कपिल जहांगीर, जिन्होंने संगीत दिया उनके नाम हैं अश्विनी पवार, विनय विनायक, ऋषि सिंह सिसोदिया, एम सुधाकर, शविका जिंदल।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 MHz अर्थात 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं चित्रपट संगीत की ओर।

चित्रपट संगीत का यह पहला गीत हमने लिया है फिल्म मैं हूं ना से। इस गीत को आवाज दी है अभिजीत और श्रेया घोषाल ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट संगीत और आप सुन रहे हैं ये गीत जिसे लिया है हमने फिल्म गैंगस्टर से। आवाज दी है अभिजीत ने और लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत तराशा है प्रीतम ने।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।
2: कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। आमिर खान अलका याग्निक की आवाज में एक गीत हमने लिया है फिल्म सरफरोश से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से तराशा है जतिन ललित ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

चित्रपट संगीत का एक गीत हमने लिया है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म साथिया से। इसे लिखा है गुलजार ने और संगीत से तराशा है AR रहमान ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म डुप्लीकेट से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक गीत हमने लिया है फिल्म बेटा से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने।

चित्रपट संगीत का ये गीत हमने लिया है फिल्म राजा बाबू से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत सितराशा है आनंद मिलिंद ने।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम।
1: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसान के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको एक बार फिर फिल्म संगीत की ओर।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। फिल्म संगीत का यह पहला गीत हमने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में लिया है फिल्म रॉकी से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है फिल्म शराबी से। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और मैं हूं आपका रेडियो साथी अंकुश। ये गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म झुक गया आसमान से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से तराशा है शंकर जयकिशन ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत को लिया है हमने फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाज़ है किशोर कुमार की, लिखा है मजरूल सुल्तानपुरी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत हमने लिया है फिल्म बाजार से। लिखा है मीर तकी मीर ने और संगीत से तराशा है खय्याम ने।

जगजीत सिंह की आवाज़ में गीत हमने लिया है फिल्म अर्थ से। इसको लिखा है कैफी आज़मी ने और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

आशा भोसले की आवाज़ में एक गीत हमने लिया है फिल्म उमराव जान से। इस गीत को लिखा है सहरियार ने और संगीत से सजाया है खयाम ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक

आह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

वो दौड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

0: मेरा।
1: उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो गा रही है प्रेम गीत, फूलों की माला में पिरोती है प्यार के मन के।

नहीं पहने। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बच्चा बच जाओ।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, जिसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्रा

0: अर्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the 5th and final leg of his 5-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the fourth